0: வந்தே மாதரம்.
1: சுஜலா சுஃபலா மலய ஜீதலா.

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026 सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण प्रारंभ होता है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी सागर है। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और

0: क्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं ये मातृवंदना समूह स्वर में।

समूह स्वर में ये मातृवंदना भी आपने सुनी और अब आइए सुनते हैं गणपति वंदना वाणी जयराम के स्वर में। शब्द रचना संत तुलसीदास की है, संगीत रघुनाथ सेठ का।

वाणी जयराम और साथियों की आवाजों में ये भक्ति रचना भी आपने सुनी। और अब आइए सुनते हैं एक और संत तुलसीदास की ही रचना, मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन की आवाजों में।

संत तुलसीदास की रचना सुनी आपने, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं यह भजन जगजीत सिंह के स्वर में, रचना रघुनाथ रविंद्र पठानिया की है।

जगजीत सिंह के गाए इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त हुआ। छह बजकर 25 मिनट हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आपका स्वागत है। सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। स्वर होंगे लक्ष्मी शंकर और सुरेश वाडकर के। 6:40 पर सुनिएगा भूले बिसरे गीत। संस्कृत में समाचार दिल्ली से रिले करेंगे 6:55 पर। 7 होगा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। 7:05 पर सुनिएगा कृषि संकेत में पशुपालन में पानी प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बी के शर्मा। प्रादेशिक समाचार 7:10 पर भोपाल से रिले किए जाएंगे। 7:20 पर सुनिएगा साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। 7:50 पर संगीत सरिता का आनंद आप ले सकेंगे। सुबह 8 समाचार प्रभात दिल्ली से रिले करेंगे। लोक रंग लोक संगीत में लोक गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 8:15। 8:30 पर बाल सभा आप सुन सकेंगे। सुबह 9 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। 10 भोपाल से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। फोन करें गीत सुने ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:05 पर। आज सुबह 11 भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता से मन की बात दिल्ली से रिले करेंगे। 11:30 पर मन की बात के संस्कृत संस्करण का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम भी दिल्ली से ही रिले किया जाएगा। दोपहर 12 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले करेंगे। दोपहर में 2 सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण भोपाल से। भोपाल से प्रादेशिक समाचार होंगे दोपहर 2:10 पर। 2:15 पर दोपहर समाचार दिल्ली से। 2:30 पर मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5 आप सुनेंगे इस घंटे की सुर्खियां। रिले करेंगे भोपाल से। 5:02 पर भोपाल से ही युववाणी रिले करेंगे। शाम 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं।

शाम 5:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता 6 बजे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से, 6:45 पर लोकरंग शाम 6:30 सुनिएगा सदाबहार गीत। हिंदी में समाचार दिल्ली से रिले करेंगे शाम 7 बजे। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण होगा। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे। शाम 7:20 पर सुनिएगा लोकरंग और 7:30 पर आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे ग्राम सभा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम होगा सुर्खियों में, रिले करेंगे भोपाल से। रात्रि 8:15 पर होगा भोपाल से ही रिले कार्यक्रम डगर विकास की। रात्रि 8:30 चित्रपट संगीत। 8:45 पर समाचार संध्या दिल्ली से रिले करेंगे। 9 बजे होंगे मन चाहे गीत और रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

समय हुआ है सुबह के 6:30। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ लक्ष्मी शंकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है, जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्ट जन में एक लक्षण समान होता है। जहां संत जन का बिछोह प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कव्य मांस खाना छोड़ देते हैं?

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, स्वर थे लक्ष्मी शंकर और सुरेश वाडकर के। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। वक्त हुआ है 6:40। पेश है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। शमशाद बेगम की आवाज में ये गाना है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, धुन बनाई है सचिन देव वर्मन ने, फिल्म का नाम बहार।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में तलत महमूद की आवाज में अरमान फिल्म का गाना, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: और अब आइए सुनते हैं दो भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज, राजा मेहंदी अली खान के बोल और धुन सचिन देव बर्मन की।

0: Rod.
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किड बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: और कार्यक्रम के अंत में मल्हार फिल्म का गाना हम सुनते हैं। मुकेश की आवाज़, कैफ इरफानी के बोल, धुन बनाई है रोशन ने।

कार्यक्रम सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोताओं को ब्रिजेश रिछारिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, चेहरे पर एक मधुर सी मीठी सी मुस्कान के लिए व्यक्ति अपना सर्वस्व लगाने तक के लिए तैयार हो जाता है। मुस्कान अपने चेहरे की हो या अपनों के चेहरे की, दोनों जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि एक की उदासी दूसरे की मुस्कान को रहने नहीं दे सकती। इसे पाने के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों तरह के प्रयास किए जाते हैं। ये विषय संस्थागत से अधिक व्यक्तिगत लगता है। अगर हर व्यक्ति एक दूसरे के मुस्कराते चेहरे की आरजू कर बैठे तो क्या नजारा होगा, सोचकर ही मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है और चेहरा खुद ब खुद खिलने सा लगता है। आज राष्ट्रीय मुस्कान दिवस भी मनाया जाता है, साथ ही मुस्कान लाने के बड़े प्रयत्न के रूप में देखा जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज है। इसको मनाने से ज्यादा मानने की जरूरत होती है क्योंकि अलग अलग रूपों में तंबाकू उत्पाद मानव और मानवीयता दोनों को ही खोखला कर रहे हैं। न जाने कितने परिवार तंबाकू की चपेट में आकर अपनी सुख समृद्धि गंवा चुके हैं। तंबाकू का सेवन एक व्यक्ति करता है लेकिन प्रभावित होता है उसका पूरा परिवार। इस दिवस को मनाने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल स्वागत योग्य है। इस दिशा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना और खुद को तंबाकू से दूर रखकर सेवन करने वालों को इससे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम राष्ट्रीय मुस्कान दिवस मना सकें। हमारी जागरूकता ही समाज में जागृति का कारण बन सकती है क्योंकि जो व्यक्ति इसकी ओर आकर्षित होता है तो आरंभिक अवस्था में उसके लिए उससे बेहतर कुछ और लगता नहीं है और समझाइश देने वाला कई बार ऐसा होता है कि उसे अपने दुश्मन सा भी लगने लगता है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि बाद में जब उसकी हानि उसके नुकसानों से उसका सामना होता है तो उसे लगता है कि ये सब जो हमें समझाइश देते थे वो हमारे हित चिंतक ही थे, लेकिन तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए समय रहते हमें खुद तो सचेत होना ही है और दूसरों को भी उसके प्रति हमें सचेत करना चाहिए क्योंकि उपयोग करने के लिए, सेवन करने के लिए प्रकृति ने और हमने भी बहुत सारी चीजें तैयार की हैं अपने लिए।

और हम सभी के लिए जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हैं, अच्छी भी हैं और जिससे कई तरह के लाभ भी होते हैं। तो जब सेवन करना ही है तो उन चीज़ों का सेवन करें, क्यों इस तरह के इन तंबाकू उत्पादों की ओर हमें आकर्षित होना, इनसे दूर जाकर इनसे दूरी बनाकर हम खुद को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। तो इसी संकल्प के साथ आज का विश्व तंबाकू दिवस भी हमें मनाना है और इसके पीछे जो भावना है उसको आगे बढ़ाना है, उस पर काम भी करना होगा। तो आज के लिए सुबह सुबह में बस इतना ही।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। सात बजकर पांच मिनट हुए हैं। सुनिए कृषि संकेत में पशुपालन में पानी प्रबंधन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बी के शर्मा।
1: जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं, पानी दिन पे दिन कम हो रहा है या दूषित भी हो रहा है, दोनों चीजें हैं असर कर रही हैं। तो पशुओं के लिए जो पानी की व्यवस्था है, वो जैसे जो पशुपालक दिन में दो बार पानी पिलाते हैं या हौदी में पानी पिलाते हैं, इस तरीके को बदलना होगा। अब हमें नए तरीके से डेयरी फार्मिंग या पशुपालन करना होगा। उसमें मैं सभी पशुपालकों से ये कहना चाहूँगा कि अब आज का दौर ये है कि अच्छा दूध उत्पादन देने वाले कम पशु रखे जाएं। ज़्यादा पशु रख रहे हैं, एक एक लीटर वाले रख रहे हैं, आपकी व्यवस्था मैनेजमेंट खराब हो रहा है और सभी को पोषण भी उचित मात्रा में नहीं दिया जा सकता। यदि किसी पशुपालक के पास पशु संख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से पानी की और दाने की सारी समस्याएं आएंगी, और यदि पशु कम हैं तो आप उनको उचित मात्रा में पानी उपलब्ध करा सकते हैं। देखना ये होगा कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो पशुओं को दिन में तीन और चार बार पानी पिलाना है, और इसमें सबसे अच्छा उपाय ये होता है, मैं आज सभी लोगों को बता दूं, बहुत सरल उपाय है, कम पैसे का उपाय है, स्वचालित पानी दिया जाना चाहिए। उसमें क्या होता है, पशु की मान लो 3 बजे इच्छा है पानी पीने की, लेकिन जो पशुपालक हैं वो 6 बजे दे रहे हैं, 7 बजे दे रहे हैं, तो जब वो अपनी इच्छा के अनुरूप पानी पिएगा पशु, तो निश्चित रूप से उसके दुग्ध उत्पादन में, पाचन क्षमता में, इस सब में परिवर्तन आएगा, और बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। जब आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि जो आपकी चारा डालने का जो स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंजर, जिसमें आप चारा डालते हैं, उसमें सभी मैंजर्स में 3-3 फिट की जगह छोड़ के 1-1 फिट का एक सीमेंट का टब बनाया जाए और उसमें पाइपलाइन डाली जाए, और जिसको कि एक बाल के थ्रो 30-40 रुपए का खर्च आता है, एक तरफ एक बाल लगा दीजिए, वो सारे मेंटेन रहेंगे, उनमें पानी भरा रहेगा। इससे क्या होगा कि पानी बर्बाद नहीं होगा, और दूसरा ये होगा कि एक पशु से दूसरे पशु में बीमारी स्थानांतरित नहीं होगी। एक ही हौदी में निमोनिक है या उसको निमोनिया है या गलघोंटू है, ऐसे पशु उसी हौदी में पानी पी रहे हैं, दूसरा पशु आके उसी हौदी में पानी पी रहा है, तो बीमारी को हम स्वतः बढ़ा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक वाटरर बहुत सरल विधि है, चाहे तो कई गौशालाओं में हमने लब बनवाया है, वहां आके आप देख सकते हैं, एक बार बन जाएगा, जीवन भर के लिए काम होगा, और आपको चिंता नहीं रहेगी। पशुपालक मान लीजिए शहर से बाहर गया है, शाम को लौटता है, तो उसके पशु बराबर टाइम से पानी पीते रहेंगे, दूसरों पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा, मजदूरों पे कि वो पानी पिलाते हैं कि नहीं, और पानी की बचत भी बहुत होगी। क्योंकि होता क्या है, जब इकट्ठे में पानी पीते हैं तो पानी दूषित भी हो जाता है, मतलब पहली बार जिसने ताजी हौदी भरी है और पानी पिया, उसको तो शुद्ध पानी मिला, लेकिन अगले बाकी पशुओं के लिए वो पानी दूषित हो चुका है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, पानी की शुद्धता और पानी की बचत दोनों पर हमें जब ध्यान रखेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे और बीमारियों पर भी रोकथाम कर पाएंगे।
0: ये था हमारा आज का कृषि संकेत, पशुपालन में पानी प्रबंधन। तो निश्चित ही पशुपालकों को इससे लाभ होगा, और ये जानकारी उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी, जिससे कि वो अपने पशुओं के पालन के समय आने वाली परेशानियों से भी बच सकेंगे और उनको

को स्वस्थ रखने की दिशा में भी बेहतर कदम उठा सकेंगे, जिससे कि उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा और पशु, अगर आप पशुधन पाल रखा है तो उसके उनके स्वस्थ रहने से आप अनेक चिंताओं से भी मुक्त रहेंगे। तो इसीलिए हम इन माध्यमों से आपके लिए ये आवश्यक जानकारियाँ और उपयोगी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान। और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू, 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉक्टर यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूची

0: सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता कई द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
2: हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगरमालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पूल का नाम कैप्टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर होगा, चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो सकती है। खंडवा जिले में बादल छाए रहने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में 2 महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में 4 लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिव्रम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ।

भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम के चौथे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर।
2: गागर में सागर,
3: आकाशवाणी सागर के सभी श्रोताओं का हमारी साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।

0: आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेगमेंट सागर मंथन से।
1: सागर मंथन।
0: सागर मंथन में सबसे पहली जानकारी है सागर में संपन्न हुए सालाना उर्स के बारे में। सागर के सदर बाजार क्षेत्र में स्थित तार वाले बाबा हजरत असगर अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 3 दिवसीय सालाना उर्स का आयोजन हुआ। कौमी एकता के प्रतीक इस उर्स में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शनिवार यानी 23 जून से 25 जून तक चलने वाले इस उर्स में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और कव्वालियों का आनंद लिया।
2: दुनिया के जरूर

0: इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी ने इस आयोजन पर आकाशवाणी सागर को बताया।
1: ये जो उर्स हो रहा है इसके बारे में आप बताइएगा, कितने सालों से आप आ रहे हैं?
2: ये मेरे होश से, चूंकि मेरे वालिद भी आते थे तब से मैं उनके साथ आया, और आज मैं लगातार जब भी मुझे अवसर मिलता है, यहाँ आने का मौका मिलता है, बाबा की दुआओं से आज हम लोग सब अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और बाबा से और मालिक से ये दुआ करते हैं कि इस तरीके से जो हमारी जो व्यवस्था ये बनी रहे और हम अमन चैन शांति के साथ जब तक हमारा जीवन है इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होते रहें।
0: पूर्व विधायक श्री सुनील जैन जी के विचार।
3: तार वाले बाबा साहब की दरगाह पर कई बार आने का हम लोगों को मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। पीलीकोटी का उर्स हो, चाहे हमारा धामोनी का उर्स हो, कहीं भी हो इस तरह के आयोजन, ये चाहे हमारा जैन धर्म का हो, चाहे हिंदू संस्कृति का हो, अभी हम गंगा आरती से होकर आ रहे हैं, तो ये सारे आयोजन जो हैं ये हमारे कौमी एकता के जीते जागते उदाहरण हैं। उर्स कमेटी में जो हमारे तार वाले बाबा साहब के यहाँ पर जो उर्स हो रहा है, इसमें केवल मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं हैं, इसमें हर वर्ग का आदमी यहाँ पर मौजूद है, और यही हमारे इस देश की संस्कृति है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश की संस्कृति अमिट रहे, इसको कोई मिटाने की कोशिश ना करे, हर धर्म और हर जाति और हर वर्ग को जीने का अपने अधिकारों के साथ अधिकार है, और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए।
0: छावनी परिषद सागर के पूर्व पार्षद श्री मुबीन मकरानी जी,
1: इस उर्स के बारे में बताइएगा, ये कब से हो रहा है?
4: ये उर्स जो है, मेरी तो आज 55-56 साल हो गए हैं, मेरे बाप दादों के टाइम से ये उर्स 100-200 साल पूर्व से होता चला आ रहा है, और जो कौमी एकता का प्रतीक है, यहाँ किसी भी समुदाय के साथ कभी भी कोई प्रकार का ऐसा भेदभाव नहीं होता है, हम सब सारे लोग मिलकर तारवाले बाबा का उर्स हमेशा मनाते चले आए।
0: इस उर्स में शामिल कुछ श्रद्धालुओं के विचार।
5: बशीर अहमद छोटकल।
1: आप इस तारवाले बाबा कमेटी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो इस उर्स का उद्देश्य क्या होता है?
5: भाईचारा बना रहे, भाईचारा एकता बनी रहे, हर कौम का आदमी आता है।
6: मेरा नाम हाजी शकील अहमद राइन।
1: आप तारवाले बाबा के उर्स में कब से आ रहे हैं?
6: कई सालों से आ रहे हैं।
1: तो बताइएगा आपको कैसा लगता है?
6: ये स्थान जो होते हैं, दरगाह हुए, मंदिर हुए, ये सुकून की जगहें होती हैं, और जो प्रोग्राम होते हैं, जलता हो, कव्वाली हो, ये कौमी एकता के लिए माहौल अच्छा रहे, सद्भावना बनी रहे एक दूसरे में, और यहाँ पर दुआएं होती है देश की शांति के लिए।
1: अपना नाम बताइए।
7: ऋतु विनोदिया।
1: ये जो तार वाले बाबा का उर्स हो रहा है, तो कब से सुन रहे हैं आप?
7: बचपन से, पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं।
1: लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
7: बढ़िया है, हम लोगों का यही कहना है कि हमारे घर में जो, मतलब घर के पास जो छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, उसमें आओ, एंजॉय करो, क्योंकि दूर तो हम जा नहीं पाते, जब घर के सामने है तो आना बनता है। सभी भाईचारे का ये है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग आते, सभी एंजॉय करते हैं। सभी
1: अच्छा, ऐसे आयोजनों का उद्देश्य क्या होता है?
7: एकता का, यही कि सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, है ना, भाईचारा का जो है आगे बढ़ाएं, मतभेद मिटाएं।
0: और इस तरह लोगों ने कव्वालियों के साथ साथ उर्स का भरपूर आनंद लिया।
8: मंदिर

0: और अब अगली जानकारी। 29 मई को दूर संचार से संबंधित विषयों पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार सागर में संपन्न हुआ, जिसमें दूर संचार के प्रसार प्रचार के बारे में तथा उससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों से साझा की गईं। इस कार्यशाला में सहायक महानिदेशालय दूर संचार भोपाल से आए श्री देवांशु शुक्ला जी ने अपने उद्बोधन में कहा,
1: इस कार्यशाला का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली 4 फरवरी 2026 को स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की तीसरी मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश शासन की, जो कि चीफ सेक्रेटरी सर के चेयरमैनशिप में होती है। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के एडिशनल डीजीटी, साथ में विभिन्न डिपार्टमेंट्स, लैंड डिपार्टमेंट जो है, वाटर डिपार्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट, PWD, फॉरेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट, इन डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर भी प्रेजेंट थे। तो उसमें बेसिकली काफ़ी सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ जो कि टेलीकॉम से रिलेटेड रहते हैं। कुछ मुद्दे पॉलिसी लेवल पे थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हेड्स के लेवल पे सॉल्व होंगे, और कुछ मुद्दे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे थे। उसमें से मेन मुद्दे थे जैसे कि DLTC कन्वीन करना, DLTC की मीटिंग रेगुलरली हो, इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्कशॉप करने का हम लोगों ने सोचा था। उसके अलावा CBD ऐप के बारे में जानकारी देना। कई बार क्या होता है, EMR रेडिएशन के इश्यूज पे SDM लेवल पे काफ़ी सारे जो लाइसेंसेज रहते हैं वो रोक लिए जाते हैं, तो उसके बारे में एक अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना, ऑफिसर्स तक पहुँचाना, और साथ में जो टेलीकॉम के टावर इंस्टॉलेशन के और राइट ऑफ वे के परमिशंस होती हैं OFC लेइंग की, तो उसके बारे में जो नया रूल है इंडियन राइट ऑफ वे रूल्स टेलीकॉम के 2024 के, उसके बारे में जानकारी कन्वे करना। तो ये 3-4 उद्देश्य के साथ हम लोग जो है वर्कशॉप करने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं।
0: श्री शुभम यादव, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन भोपाल हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर अपने उद्बोधन में लोगों को बताया।
2: कई ऐसी अवधारणाएं या गलतफहमियां बहुत लोगों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेके बनी हुई हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह और पीछे का जो उसकी हिस्ट्री या बैकड्रॉप रहा है उसके थ्रू एड्रेस करने की कोशिश करूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन

0: पे बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली है क्या, ये वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो आप जानते हैं, बचपन में कभी मैग्नेट से खेला होगा या आपके रूम्स वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू रन करती है, ये वही इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो बस एक मीडियम चेंज करके फ्री एयर को या हवा को यूज़ करती हैं एज अ मीडियम प्रोपगेट करने के लिए। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि क्या आप जानते हैं कोई एक ऐसा नेचुरल सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर ने हमें दिया है, अगर आप सनलाइट देखें, एक्चुअली सनलाइट वो एक नेचुरल सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसमें ऑलमोस्ट सारी ही फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कहीं ना कहीं हम वापस अगर स्कूल में जाएँ तो कहीं पढ़ते थे कि ओजोन लेयर एक होती है हमारी प्रोटेक्टिव जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से इमिट होती हैं। उन रेडिएशंस को अगर मैं मोटा मोटा साइंटिफिक तौर पे डिवाइड कर दूं तो उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उनके इफेक्ट पे कि वो हमारी बॉडी पे क्या करते हैं, मतलब इंसिडेंट होने के बाद या अब्जॉर्ब होने के बाद, उनको मैं दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकता हूँ, मोस्टली नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो जब आप कहीं में भी शायद पढ़ा हो कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उनमें अगर एनर्जी आती है, इंसिडेंट होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और उस एटम से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो केमिकली रिएक्ट करने के काबिल बन पाता है। तो इन क्लास ऑफ रेडिएशंस को आयनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। और आम यूज़ में अगर मैं कहूँ, आप कभी ना कभी किसी का हाथ टूटा होगा, आप कभी एक्सरे कराने गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा आपने एक्सरे मशीन में लिखा रहता है कि लिमिटेड एक्सपोजर रखिए, रेडिएशन है, हार्मफुल है। वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। अगर मोटा मोटा कंपेयर करूँ तो जो हमारे मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशंस हैं और जो एक्सरे से निकलने वाली रेडिएशन है उनमें लगभग 10 लाख टाइम्स का डिफरेंस है। 10 की पावर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वो फ्रीक्वेंसी आती है जो एक्सरेज वगैरह या आयनाइजिंग नेचर के जो रेडिएशन।
1: और इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट है शिखर की ओर। शिखर की ओर, इसमें आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण में वन और वन प्राणियों की भूमिका के बारे में। इस विषय पर हमसे जानकारी साझा कर रहे हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के DFO श्री रजनीश कुमार सिंह जी।
2: तमाम तरह के जैविक दबाव हैं, हमारे देश की जनसंख्या लीप एंड बाउंस में बढ़ रही है और आज भी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या ऐसी है जो जंगलों पर निर्भर है और उनकी जंगलों पर निर्भरता के कारण तमाम प्रयासों के बाद भी जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन यदि हमने वन्य प्राणियों का संरक्षण कर लिया तो होता यह है कि वन्य प्राणियों का संरक्षण करने के लिए आपको अनिवार्य है कि आप उनके घर जंगल को संरक्षित करें। तो जैसे मैं कहूँ कि हमें टाइगर का संरक्षण करना है तो टाइगर का संरक्षण करना तभी संभव है जब उसका खाना हो। हमें चीतल चाहिए, सांभर चाहिए और बहुत सारे हर्बीवोर चाहिए, तो हम हर्बीवोर संरक्षित करेंगे और उन हर्बीवोर को संरक्षित करने के लिए हमें घास के मैदान चाहिए, तो हम घास के मैदान और वो पेड़ पौधों को संरक्षित करेंगे जिनकी पत्तियों को या फलों को ये शाकाहारी प्राणी खाते हैं। तो इस तरह से हम कहते तो हैं कि हम वन्य प्राणियों को संरक्षित कर रहे हैं लेकिन हम अंततोगत्वा जंगलों को संरक्षित करते हैं वन्य प्राणियों के नाम पर और हम खुद के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंट को यदि हमें अच्छा रखना है तो वन्य प्राणियों को भी सुरक्षित और स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आमतौर पे एक बचपन में सुनी हुई कहानी बताता हूँ कि एक बूढ़ी महिला थी, अंधी भी थी, आँखें नहीं थी उसकी, और उसने भगवान से जब वरदान मांगने का समय आया तो उसने कहा कि भगवान मुझे अपने पोते को चांदी की कटोरी में खाना खिलाना है और उसको देखना है कि वो खाना खा के कितना खुश होता है। तो वो चतुर महिला थी, भगवान ने उसको कहा था एक वरदान लो, पर उसने एक ही वरदान में 3-3 वरदान ले लिए। तो उसी तरह से जब हम टाइगर कंजर्वेशन की बात कहते हैं ना, तो कई बार लोगों को लगता है कि हम केवल टाइगर की बात क्यों कह रहे हैं। हम वास्तव में टाइगर का केवल नाम लेते हैं पर हम संरक्षण की बात पूरे पर्यावरण की करते हैं, क्योंकि यदि टाइगर है तो जैसा मैंने बताया था हर्बीवोर्स चाहिए, हर्बीवोर्स के लिए ग्रास चाहिए, और यदि घास के मैदान और जंगल है तो हमारी नदियों में पानी रिस-रिस के आएगा, बाढ़ नहीं होगा। रिस-रिस के आने वाला जो पानी है साल भर नदी में रहेगा तो साल भर हम खेती कर पाएंगे, हमारे उद्योग धंधे चल पाएंगे। तो इसी को वैज्ञानिक एक टर्म यूज करते हैं कि टाइगर इज अम्ब्रेला स्पीशीज, टाइगर एक छतरी है और उस छतरी के नीचे ही ये पूरी मानवता फल फूल रही है और हमारे जो वुड इकोसिस्टम है उसका वो एपेक्स प्रीडेटर है। तो यदि हमने टाइगर को बचा लिया तो हम अपनी पूरी मानवता को बचा पाएंगे, जंगलों को बचा पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ सागर में बैठे हैं, मध्य प्रदेश का केंद्र है लगभग, तो मैं ऑडियंस को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि आप पश्चिम मध्य प्रदेश के हिस्सों को देखें, जहाँ धीरे धीरे करके जंगलों का लगभग हमने पूरा सफाया कर दिया है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर जैसे जिले, जहाँ पे यदि आपको पानी लाना हो तो 3-5 किलोमीटर बहुत सामान्य दूरी मानी जाती है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश, शहडोल, डिंडोरी, मंडला ऐसे जिलों में आमतौर पे आपके घर से 10-20 मीटर दूर पे ही आपको पानी मिल जाता है, और आपको पानी जैसी एक बेसिक कमोडिटी लाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। तो यदि आप टाइगर और उसके जंगलों को बचा पाएंगे तो इस तरह से आप पूरी मानवता और पर्यावरण को बचा पाएंगे। एक और उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे भारत में माँ गंगा का स्थान है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक और रिलीजियस और हर तरह से माँ नर्मदा का योगदान है। लेकिन जिन लोगों ने माँ नर्मदा का उद्गम स्थल देखा है वो तो एक छोटे से नल की टोटी से निकलता हुआ पानी जैसा है, और उसके बाद में बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और रातापानी और हमारा वीरांगना दुर्गावती, इन जंगलों से जो रिस रिस के पानी जाता है वो ही माँ नर्मदा को उत्ता विहंगम बनाता है कि वो हमारे पूरे मध्य प्रदेश के खेतों को सींचती हैं और पूरा जो जीवन देती हैं। तो हम जब टाइगर और वन्य प्राणियों को बचाएंगे तो उसका सीधा सीधा बाई प्रोडक्ट है कि हम अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल ले पाएंगे।
1: साथियों नमस्कार, सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
3: और अब चलिए चलते हैं सेगमेंट सागर के मोती की ओर।
4: सागर के मोती।
5: श्रोताओ, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारा सेगमेंट होता है सागर के मोती। सागर के मोती में हम हमेशा ऐसी प्रतिभाशाली हस्तियों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा खास किया है, लगता है कि इनसे बात की जाए और उनके विचार जाने जाए। इसी तारतम्य में आज हम सागर में, हमने एक सागर की मोती उनको ढूंढ निकाला है। उनका नाम है श्री सुहेल खान जी, जो कि कूडो गेम में चैंपियन हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। तो आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इतने शिखर पर कैसे पहुंचे, कैसी उनकी मेहनत थी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: देखिए, कूडो के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा, ये क्या गेम होता है।
6: कूडो एक जापानीज कॉम्बैट स्पोर्ट है। अगर मैं सरल भाषा में दर्शकों को बताऊं तो कूडो एक ऐसा मिक्स मार्शल आर्ट है जिसके अंदर हम सभी मार्शल आर्ट का समावेश है। मतलब हम इसमें बॉक्सिंग के पंचेस भी करते हैं, टाइकोवांडो के किक्स भी करते हैं, जिजित्सु के लॉक भी करते हैं और रेसलिंग के थ्रोज भी करते हैं। तो कूडो इज़ अ कम्प्लीट मिक्स मार्शल आर्ट जिसके अंदर हम सभी विधाओं को एक साथ करते हैं, और ये जापानीज कॉम्बैट स्पोर्ट है और भारत सरकार से रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है।
5: इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला?
6: इसका इंस्पिरेशन मेरे को स्टार्ट हुआ जो हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार है अक्षय कुमार जी। 2012 में अक्षय कुमार जी ने कूडो खेल की नींव रखी भारत देश में, और उसके साथ सोशिहान मेहुल वोरा जी ने भी, और हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान सर ने कूडो की नींव रखी। तो उधर से मेरी ये चीज़ें चालू हुई।
5: अच्छा, जैसा कि हम देखते हैं कि ज़मीन पे सामने वाले को पटक दिया जाता है, तो ज़मीन क्या सख्त होती है, उसमें लगता है कुछ?
6: नहीं, कूडो की जो फाइट होती है वो एक मैट पे होती है, प्रॉपर इक्विप्ड मैट है। और वो ये भी बताना चाहूँगा, कूडो फुल कॉन्टैक्ट मिक्स मार्शल आर्ट के साथ एज अ सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ भी खेला जाता है, जिसमें हम फुल कॉन्टैक्ट फाइट तो करते ही करते हैं, बट उसके साथ हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी रहते हैं जिससे किसी भी एथलीट को या छोटे बच्चे को किसी भी तौर की चोट या इंजरी नहीं आती है। कूडो में एक हेड गियर होता है, एक चेस्ट गियर होता है, शिन गार्ड गार्ड होते हैं जिससे सामने वाले बच्चे को कोई इंजरी ना आए।
5: अच्छा, इसमें पॉइंट कैसे बनते हैं?
6: कूडो में पॉइंट सिस्टम बड़ा सरल है कि अगर हम कोई भी इफेक्टिव स्ट्राइक करते हैं, इफेक्टिव स्ट्राइक का मतलब होता है अगर मैंने सामने वाले को मारा है तो उसको लगना चाहिए, दैट मींस अगर मैंने उसको इंपैक्ट दिया है तो उसका रिएक्शन होना चाहिए। आइदर मैंने उसको पंच किया, सामने वाला गिरा, तभी मेरे को पॉइंट मिलेगा। मैं उसको मार रहा हूं और सामने वाले को कुछ भी लग नहीं रही है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो अगर हम कंटिन्यूअसली सामने वाले को मारते जाते हैं क्योंकि फाइट रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप फाइट चलती है, 3 मिनट की एक बेसिकली फाइट होती है, तो अगर हम जैसे नॉन स्टॉप मारते जाते तो वही एक पॉइंट आगे चल के 2 पॉइंट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं यूको, और वही 2 पॉइंट चल के आगे चल के 4 हो जाते हैं अगर हम उसको नॉन स्टॉप और मारते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम वजारी। और कूडो मिक्स मार्शल आर्ट में अगर कोई सबसे बड़ा पॉइंट है वो उसको बोलते हैं इप्पॉन, जो कि 8 पॉइंट होते हैं जो कि सिर्फ हम सबमिशन के थ्रू या नॉकआउट के थ्रू ले सकते हैं। सबमिशन का मतलब होता है हम ग्राउंड पे जाके किसी को लॉक या चोक कर दे, या फिर हम किसी को नॉकआउट एक ऐसा पंच मारे के सामने वाला खड़ा ही ना हो। तो इस प्रकार से पॉइंट सिस्टम है कूडो का।
5: अभी तक आप कहाँ कहाँ खेलने गए?
6: मैं अभी तक कई बाहरी कंट्री में खेल के आ चुका हूँ, जैसे कि आर्मेनिया में होके आ चुका हूँ, रिसेंटली अभी सीनियर कूडो वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल लेके आया था बुल्गारिया से, उसके पहले जापान होके आ चुका हूँ, मलेशिया होके आ चुका हूँ, इजिप्ट होके आ चुका हूँ।
5: चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात है, और आपने भारत में तो नाम कमाया ही है, भारत के बाहर भी आपने भारत का नाम किया है। आपने आकाशवाणी सागर के लिए इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अब बारी है सेगमेंट माटी की महक की।
4: माटी की महक।
5: जैसे कि आप और सभी जानत हो, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका है गागर में सागर। ए कार्यक्रम में हमारे एक सेगमेंट होते हैं माटी की महक। आप और जानत हो, माटी की महक कार्यक्रम में हम ऐसे कलाकारों को आपके सामने ले आते हैं जो उनमें कला तो कूट कूट के भरी है, मनो कहा है स्थानीय स्तर तक बस सीमित हो गई है। हम आप औरों के सामने ऐसे कलाकारों को यही से लाते हैं कि आप औरें सुने और उनकी बातों को आनंद लें और उनमें जो छुपी कला है उसके बारे में जान सकें। ऐसे ही हमारे आज के जो कलाकार हैं, लोकगीत गायक हैं, उनको नाम है श्रमण राउत जी, जो के सुल्तानपुर, जो अपने राजघाट के पास पड़ा थे सुल्तानपुर, उते के रहवारे हैं। तो आओ उनसे अपन बातचीत शुरू करा थे और जाना थे कि उनमें का खास है। तो एक कार्यक्रम में आपको खूबई खूबई स्वागत है।
7: धन्यवाद। सबसे पहले सभी भैया बहनन को हमारी दो हाथ जोड़कर राम राम पहुंचे।
5: देखो, सबसे पहले तो हम आपसे जा पूछें कि जा विधा
7: जी,
5: आपने कोनों को देख के सीखी का, कोई से प्रेरणा लई का?
7: जी सर, हमारे एक बड़े भाई थे, पहले वो गांव में ही भजन कार्यक्रम करते थे, तो हम छोटे थे जब 5वीं क्लास पढ़ते थे, मुझे उनको देखकर बहुत शौक होती थी, तो उनके देख देख के सर हम पीछे लग रहते थे और उन्हीं का देख देख के सीखे हैं।
5: तो देखो, प्रेरणादायक आपके भाई साहब रहे।
7: जी सर।
5: अच्छा, लेकिन आपने गावो शुरू कब करो? देखो, आपने उनको सुनो
7: जी,
5: और सुनवे के बाद उनको गुणो।
7: हाँ।
5: लेकिन गुणवे के बाद कहा है कि कछु अपन को रिहर्सल भी करने पड़ा थे, ऐसे ही नहीं कि कोनो बैठ जाते, तो आप सीखे कैसे?
7: सर, रिहर्सल के लाने तो ऐसा है कि उनके पीछे बैठे रहते हम, वो गाते कई साल बैठे, 5-6 साल पीछे बैठे रहे, फिर धीरे धीरे हमारे और 2-3 संगी साथी थे, वे भी हमारे साथ में पीछे बैठने लगे, और पीछे बैठते बैठते उन लोगों ने हमें थोड़ा थोड़ा सिखाया कि लो आप थोड़ा सीखो, उनने बताया, मार्गदर्शन दिया, फिर धीरे धीरे जब हम पे बढ़ने लगा तो उन्हें पार्टी में थोड़ा मौका देना चालू कर कि लिए आप एक गीत गा दो या दो गा दो, यह सही सर हमें उसका अभ्यास होगा और रुचि बढ़ी आगे। सो आज हमें इतनी उसकी उमंग और खुशी भाई कि हम खुद 4 जनों को लेके अपने मंदिर में भजन कीर्तन है, गांव में है, कोई भी कार्यक्रम हो तो सब खुलवा के जाते हैं।
5: अच्छा, कितनी उम्र रही हुई है जब आपको पहली बेर मौका मिलो?
7: सर, पहली बेर मौका मिलो जब लगभग हमारी उम्र 13 या 14 साल की थी सर।
5: वो टाइम आप पढ़त भी थी?
7: जी सर, हम पढ़ते टाइम पे 7वीं 8वीं के लगभग पढ़ते सर।
5: कहाँ तक पढ़े हैं?
7: सर, अभी तो हमने बीए फाइनल कर ली है और अब तो घर पे बैठे हैं, जो ये अपना कार्यक्रम है और खेती बाड़ी है और यही में सब में लग रहे थे।
5: चलो तो कायने एक आध बानगी हो जाए तो हमारे श्रोताओं को आपकी आवाज को भी अंदाजा लग जाए है और आपकी कला को अंदाजा लग जाए है।
7: हमारे बुंदेलखंड में बहुत सी विधाएं हैं। एक छोटो सो भजन है

0: मा अरे क्रोध सतावो रावण खो मिट गओ परिवार लंका जलाई हनुमान ने मैया लंका जलाई हनुमान ने हो रही जय जयकार हे मन खो बस में राखियो हो मैया मन खो बस में राखियो हो
1: मैया मन खो बस में राखियो हे माँ। देखो कितनी अच्छी आपने सीख दी है और जो लोगी जो है एक सीख है कि अपने मन को अपन को कंट्रोल करके रखने हैं। बहुत ही अच्छो लोकगीत और बहुत ही अच्छो लगो जा भजन। अब देखो बात जा आत है कि अपन ने गावो शुरू कर दो, पहली बेरे आपको गावे को मौका मिला तो वो टाइम पे कैसो आपको सामने वाले से वो कार्यक्रम में आपको कैसे लोगों कैसी प्रशंसा मिली?
0: सर उस टाइम पे तो हमें इतनी उमंग रही कि हम खुद भूल गए कि सर हमने कार्यक्रम में कितना अच्छो गाओ कि आप जनता ने इतनी सहभागी खुशी दी हमारा ने कि हमारा ने खुद विभूल हो गए, हम आनंद विभूर हो गए। आज हम वो को लेके चले गए वही प्रेरणा में, आज हम यहाँ तक आ गए।
1: मने लोगों ने आपकी प्रशंसा करी, खूब तालियां बजाई तो दिल बढ़ गओ।
0: जी सर।
1: और दिल बढ़ गओ तो और आगे बढ़ गए।
0: हाँ।
1: तो अभी तक अपन कहाँ कहाँ गावे गए?
0: सर अभी तक तो अपन छतरपुर से अपने पास पाल्टी है और गाँव में है, भजन कीर्तन संध्या है और आस पास के जो कार्यक्रम है जैसे नवरात्रि में है और गणेश जी बैठा थे तो उसमें भी जाते हैं हम लोग।
1: अच्छा भजन के अलावा और भी लोकगीत आप कछु गात हो और कछु और कौन विधा में?
0: जी सर बहुत सी विधाएं हैं, ऐसी विधाएं अपने बुंदेलखंड में कई विधाएं हैं। एक हमारा लोकगीत है जो कि हनुमान जी का भजन है, इसको हम सुना रहे हैं आपको। आरित

0: अरे
1: और अंत में आ गए हम अपने सेगमेंट इस सप्ताह चर्चा में।
2: इस सप्ताह चर्चा में
1: रहा 2026 के पद्म पुरस्कार समारोह। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पिछले दिनों पद्म पुरस्कारों से भारत की 66 हस्तियों को सम्मानित किया। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, असाधारण और विशिष्ट सेवा, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा और विशिष्ट सेवा। इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, खेल, चिकित्सा, विज्ञान आदि के दिग्गजों को सम्मानित किया गया है। इनमें मुख्यतः कला के क्षेत्र में फिल्म अभिनेता स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र देओल जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। खेल की श्रेणी में टेनिस खिलाड़ी श्री विजय अमृत राज जी को पद्म भूषण से, तो वहीं खेल जगत से श्री रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर जी और सविता पूनिया जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें, इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस प्रकार 133 पुरस्कारों में से 66 पद्म पुरस्कार दिए गए। अगले

0: चरण में 65 दिग्गजों को पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर। इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आइए हम आपको जानकारी दे दें, इस कार्यक्रम में संकलन, निर्माण और वाचन स्वर मासूम आलम का, संयोजन एवं प्रस्तुति दीपक निषाद की है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए अब हमें अनुमति, हमारे अगले कार्यक्रम तक नमस्कार।
1: गागर में सागर।
2: साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। 7:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: और अब कार्यक्रम संगीत सरिता में आइए सुनते हैं ये एक ठुमरी शोभा गोटू के स्वर में।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम संगीत सरिता। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा बस कुछ ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्रीलाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन

0: ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉक्टर डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी

0: चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर IPL 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर RCB को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला IPL खिताब जीतने वाली RCB ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि IPL 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। DK शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी

0: सेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM 102.6 MHz पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम लोक संगीत में आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ बुंदेली लोक गीत। ये पहला लोक गीत आइए सुनते हैं बद्री प्रसाद कुड़ेरिया की आवाज में।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और पुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
2: और अब सुनते हैं ये लोकगीत राम गोपाल यादव की आवाज में।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे बाय।
1: देखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know, ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: I know, ba, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know, ma।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये लोकगीत शकुंतला राजपूत से।

0: हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा।

0: बाल सभा के प्रायोजक हैं स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर।
1: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल,
2: अपने बच्चों को दीजिए सही माहौल,
3: पढ़ाई और मस्ती साथ साथ।
2: प्ले ग्रुप नर्सरी LKG और UKG में प्रवेश प्रारंभ।
0: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल से सीखकर बच्चों को मिल रहा है उनके मनचाहे स्कूल में एडमिशन। आप किस प्रतीक्षा में हैं? तुरंत संपर्क करें
1: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर।
2: फोन 07582359725।
4: जय हिंद बच्चों, हमारे प्यारे सभी नन्हे श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम यानी कि प्यारी प्यारी सी बाल सभा में। बच्चों अभी तो खूब मौज है आपके, है ना? हम जानते हैं भाई, साल भर पढ़ाई करने के बाद गर्मियों की छुट्टी का हमारे प्यारे नन्हे श्रोता बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि सुबह आराम से उठना, स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं, मम्मा को भी थोड़ा आराम हो जाता है, आपके पीछे पीछे टिफिन बॉटल लेके भागना नहीं होता, और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे दोस्तों के साथ सुबह ठंडे में और शाम को धूप कम होने के बाद ग्राउंड में जाके खेलना हो जाता है। बहुत सारे परिवार घूमने भी जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, या फिर कई बार अपने घर भी मौसी हैं बुआ हैं उनके बच्चे आ जाते हैं तो मिलकर एकदम खूब धमा चौकड़ी कर देते हैं आप सब। कई बार परिवार के साथ बाहर जाने का भी मौका मिलता है, जहाँ नई नई जगहें देखने को मिलती हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, वहाँ के कल्चर को समझने का मौका मिलता है, और एक चीज़ ये कि खाली समय अपने हुनर को निखारने के लिए भी उपयुक्त होता है। पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों पर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिनमें आपकी रुचि है, जो भी चीज़ें करना अच्छा लगता है आपको, वे सब कर सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास में हेल्प करेंगी आगे जाके, है ना? और दूसरा क्या है कि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, और घर से निकलने में, दोपहर को स्कूल से वापस आने में दिक्कत हो सकती है, लू की चपेट में आप आ सकते हैं, गर्म हवाएं चलती हैं ना, इसलिए देखा ही होगा आपने कोई भी व्यक्ति है, कोई अंकल हैं आंटी हैं, मुंह बांधकर ही आपको देखने को मिलेंगे रास्ते में सड़क पे, है ना? सफ़ेद तौलिया किसी ने बांधा हुआ है, किसी ने गमछा ओढ़ा हुआ है, किसी आंटी ने चुन्नी से मुँह बांध के रखा हुआ है, ढककर रखते हैं, और शाम को भी कभी आप 5-6 बजे तक भी कहीं घर से बाहर गए होंगे तो पता होगा आपको कि कितनी तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं। इन्हीं सब बातों के कारण प्रशासन द्वारा गर्मी की छुट्टियों की व्यवस्था की गई है, जिससे सभी को थोड़ा आराम मिल सके, और सिर्फ इतना ही नहीं, समय समय पर इन छुट्टियों के समय को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। जैसे इस बार देखा आपने कि मार्च के महीने में ही 23 तारीख से प्रशासन द्वारा छोटे बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई थी, जिससे बच्चों को गर्मी के कारण कोई परेशानी ना होने पाए, है ना? तो चलिए इन गर्मियों की छुट्टियों का आप लुत्फ लीजिए और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: भाई दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये गीत, फिल्म का नाम सदा सुहागन। और अब हम आपको लेके चलते हैं बच्चों वहाँ, जहाँ आपकी मुलाकात होगी अपने ही तरह नन्हे से बहुत प्यारे साथियों से। जी हाँ, बाल मंच, समझ गए ना आप कि अब आपसे रूबरू होंगे आपके छोटे छोटे दोस्त। तो आइए मिलते हैं बाल मंच में आपके छोटे छोटे से साथियों से।
1: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल,
2: अपने बच्चों को दीजिए सही माहौल,
3: पढ़ाई और मस्ती साथ साथ।
2: प्ले ग्रुप नर्सरी LKG और UKG में प्रवेश प्रारंभ।
3: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल से सीखकर बच्चों को मिल रहा है उनके मनचाहे स्कूल में एडमिशन। आप किस प्रतीक्षा में हैं? तुरंत संपर्क करें
1: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल, मकरोनिया सागर।
2: फोन 07582359725।
4: लेकर आए बच्चों का शो
5: बाल मंच।
0: भाई, बाल सभा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सबसे पहले इंतजार होता है अपने छोटे से साथी से मिलने का। और आप तो जानते ही हैं बच्चों, इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही प्यारा सा एक क्रम शुरू किया है हमने, जिसका नाम है बाल मंच। और बाल मंच में हमारे छोटे से साथी अपनी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं हमसे, ढेर सारी जानकारी लेकर आते हैं, किस्से सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं और संदेश

0: संदेश भी देते हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हैं बहुत सारी बातें। तो भाई आज आपको बता दें बच्चों कि एक बहुत ही प्यारे से मेहमान, एक बहुत ही छोटे से, बहुत ही सीधे साधे से मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो हम आपकी उनसे बात करा देते हैं।
1: मेरा नाम युवान साहू है।
0: युवान भाई बहुत ही प्यारा नाम है आपका। और ये बताइए किस कक्षा में पढ़ते हैं आप?
1: मैं कक्षा फर्स्ट में पढ़ता हूँ।
0: फर्स्ट में पढ़ते हैं? और
1: दीदी मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ।
0: 7 बजे स्कूल जाते हैं, तो आप बस से जाते हैं या आपके पापा आपको छोड़ने जाते हैं?
1: मैं वैन से जाता हूँ।
0: वैन से जाते हैं, चलिए। और ये बताओ आज आप अपने छोटे से दोस्तों को सुनाने के लिए, जो दोस्त आपका बाल सभा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनको क्या सुनाने वाले हैं?
1: 3 कविताएं।
0: 3 कविताएं, भाई बहुत अच्छी बात है। छोटे से मेहमान हमारे जो हैं युवान, 3 कविताएं लेके आए हैं, तो फिर एक एक करके जल्दी से सुना दो 3 कविताएं।
1: छुक छुक रेलगाड़ी, गाड़ी कहती छुक छुक छुक, धुआं उड़ाती फुक फुक फुक, सुरंग अंजन आए आगे आगे, पीछे पीछे बेबागे, सुरंग में है ये सब जाते, दिन को है ये रात बनाते, छुक छुक छुक छुक गाती जाती, सीटी भी है खूब बजाती।
0: गाड़ी कहती छुक छुक छुक, ये बहुत ही प्यारी सी कविता आपने सुनाई युवान। और अब हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि 3 कविताएं सुनाएंगे आप, और आप तीनों बाकायदा लिख कर लेकर आए हैं, तो एक कविता तो आपकी हो गई, अब आप दूसरी कविता सुनाइए।
1: सफाई अपनाओ, कूड़ा कूड़े दान में डालो, इधर उधर मत उसे उछलाओ, सदा सफाई को अपनाओ, सुंदर अपना नगर बनाओ।
0: भाई बहुत ही अच्छा सा मैसेज है आपकी इस कविता में युवान, सफाई अपनाओ। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि अभी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, स्वच्छता ही सेवा एक कार्यक्रम है उसको भी चलाया गया, और वैसे भी हम हमेशा ही कहते हैं कि जहां हम रहते हैं, जहां हम सोते हैं, जहां पढ़ते हैं, अपनी स्कूल में, अपने आसपास, हर जगह सफाई रखनी चाहिए हमें, है ना?
1: हाँ दीदी।
0: और अब एक और कविता आप सुनाने वाले हैं, तो ये और जल्दी से सुना दीजिए।
1: लाल बत्ती

0: बढ़ते जाओ।
1: भाई बहुत ही अच्छी सी कविता ये भी सुनाई आपने। और हम अब आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं युवान, कि ये जो कविताएं आप लिखकर लेकर आए हैं, ये किसने लिखी हैं? आपने खुद लिखी हैं या किसी ने लिखकर दी हैं आपको?
0: दीदी मेरी मम्मा ने मुझे लिखकर दी है।
1: बहुत ही अच्छी सोच है आपकी मम्मा की, और आपकी मम्मा से भी कहेंगे कि ऐसे ही आपको कविताएं याद करवाती रहें, जिसमें आप बार बार हमारे स्टूडियो में आते रहें, बहुत सारी कविताएं सुनाते रहें और ढेर सारी बातें हमसे करते रहें, है ना?
0: हाँ दीदी।
1: और ये बताओ खाने में क्या पसंद है आपको?
0: भिंडी की सब्जी और रोटी।
1: अच्छा भिंडी की सब्जी और रोटी पसंद है आपको, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा और क्या खाना अच्छा लगता है?
0: बैंगन की सब्जी और रोटी खानी अच्छी लगती है।
1: अच्छा बैंगन की सब्जी भी पसंद है आपको, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आपको जो भी खाने में पसंद है खूब खाते रहिए आप, और ऐसे ही हमारे स्टूडियो में आकर रिकॉर्डिंग करवाती रहिए, है ना? और अपने दोस्तों को बहुत सारी कविताएं सुनाती रहिए। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे मिलकर, आपसे बातें करके, आपकी कविताएं सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा युवान। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
0: थैंक यू दीदी।
1: आज अब जो गुड़िया अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, आइए हम उनसे प्यारी प्यारी सी बातें कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले अपना नाम बताओ अपने दोस्तों को।
2: मेरा नाम मितिशा जैन है।
1: मितिशा किस कक्षा में पढ़ती हो बेटा?
2: थर्ड।
1: थर्ड में पढ़ती है, और अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई।
2: हाँ।
1: आप अपनी मम्मी के साथ में स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराने के लिए आई हैं, है ना?
2: हाँ।
1: अच्छा और ये बताइए बालसभा कार्यक्रम सुनती हो आप?
2: हाँ दीदी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: तो बालसभा आप सुनती हैं, तो सबसे अच्छा क्या लगता है आपको बालसभा कार्यक्रम में?
2: दीदी अब जब बच्चे अपनी कविता सुनाते हैं तो मुझे वही अच्छी लगती है।
1: तो वो कविताएं सुनना पसंद है आपको?
2: हाँ।
1: और कहानियां अच्छी नहीं लगती हैं आपको?
2: अच्छी लगती हैं।
1: और जब छोटे छोटे से जो आपके साथी होते हैं संदेश देते हैं, अपना लिखा हुआ कुछ हमें सुनाते हैं, तो और अच्छा लगता है ना?
2: हाँ।
1: तो ये बताइए आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाली हैं?
2: चांद का कुर्ता।
1: चांद का कुर्ता ये कविता सुनाएंगी आप?
2: हाँ।
1: चलिए सुनाइए जल्दी से।
2: हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला।

0: सुन बात माता ने, ना हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। बात सुन माता ने यह बोला, अरे सलोने कुशल करें भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ किसी एक नाप में कभी न तुझे देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल पर, कभी एक फुट मोटा, कभी बड़ा दिखता है और कभी छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों में दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किसे रोज लिवाए, सीधे एक निमोला जो रोज बदन में आए। थैंक यू।
1: भाई मितिशा, बड़ी प्यारी सी कविता आपने अपने दोस्तों को सुनाई, और जो आपके सुनाने का जो अंदाज़ था, आप सोच सोच के, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई शब्द गलत ना हो जाए, मैं बहुत अच्छे से बोलूं। तो ये जो अंदाज़ है आपका, ये आपके दोस्तों को बहुत पसंद आने वाला है। हम देख रहे हैं कि आपने बहुत सारी सुंदर सी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो आपको चूड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है?
0: हाँ,
1: और क्या अच्छा लगता है? गर्मी की छुट्टियों में समय कैसे बिताएंगे? अच्छा ये बताइए, आपकी रुचि किस में है? आप पेंटिंग करना अच्छा लगता है आपको, या डांसिंग सीखेंगी, डांस करना सीखेंगी, या गाने में रुचि है आपकी, रंगमंच में रुचि है आपकी, किस चीज़ में रुचि है वो बताइए अपने दोस्तों को।
0: ड्राइंग।
1: ड्राइंग अच्छी लगती है आपको? अभी आप ड्राइंग सीख रही हैं क्या? कर लेती हैं आप ड्राइंग?
0: हाँ दीदी,
1: अच्छा, और इसके अलावा और क्या करती हैं?
0: मुझे थिएटर बहुत पसंद है, इसलिए मैं वर्कशॉप जाती हूँ।
1: अच्छा, वर्कशॉप जाती हैं आप, थिएटर करना अच्छा लगता है। वेरी गुड भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मितिशा, बहुत अच्छे से आप अपनी छुट्टियां बिताएं, खूब नाम कमाएं, अपनी मम्मा के साथ अपने घर पे छोटा छोटा सा उनका काम करने में हाथ बटाएं, है ना, और खूब अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपसे मिलके, आपकी कविता सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, और निश्चित तौर पर जो आपने कविता सुनाई वो आपके दोस्तों को जो रेडियो पे ये कार्यक्रम बाल सभा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी, है ना। और आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
0: थैंक यू दीदी।
2: आ ए ए उ उ ओ लेकर आए बच्चों का शो
3: बाल मंच।
4: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल,
5: अपने बच्चों को दीजिए सही माहौल,
6: पढ़ाई और मस्ती साथ साथ।
5: प्ले ग्रुप नर्सरी LKG और UKG में प्रवेश प्रारंभ।
4: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल से सीखकर बच्चों को मिल रहा है उनके मनचाहे स्कूल में एडमिशन। आप किस प्रतीक्षा में हैं? तुरंत संपर्क करें
7: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल, मकरोनिया सागर।
5: फोन 07582359725।
1: भाई बहुत ही प्यारी सी मुलाकात रही, युवान साहू और मितिशा जैन ने आकर निश्चित तौर पर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। बच्चों, इनकी तरह आप भी अपनी बातें अपने दोस्तों से साझा करना चाहते हैं तो हर बुधवार को शाम 4 बजे से बहुत से साथी आकर रिकॉर्डिंग कराते हैं, तो आप भी आ सकते हैं, बाल मंच का हिस्सा बन सकते हैं हर बुधवार को शाम 4 बजे से। चलिए, चूँकि अभी गर्मी बहुत तेज़ हो रही है बच्चों, नवतपा भी चल रहे हैं, प्री मानसून एक्टिविटी भी हो रही है, बात की जा रही है प्री मानसून एक्टिविटी की, सुना होगा आपने इस बारे में। तो बच्चों, प्री मानसून वह समय होता है जब बारिश का मौसम आने की तैयारी होती है। कई जगह तेज़ आंधी, धूल भरी आंधी, गरज चमक के साथ बारिश, ये सब देखने को मिलता है। तापमान बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी हवा में नमी बढ़ने

लगती है, जो इस बात का संकेत होता है कि अब बस बारिश का मौसम आने वाला है। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहा जाए तो मानसून शुरू होने से पहले का मौसम प्री मानसून कहलाता है, जिसमें गर्मी के साथ कभी कभी बारिश भी होती है और आंधी तूफान भी देखने को मिलते हैं, जो अभी आजकल एक दो दिन से हम देख ही रहे हैं। जैसे कहीं कहीं पर बारिश और ओले पड़ने की खबरें भी सुनने को मिली, तो इससे पता चलता है कि मानसून एक्टिव हो गया है और अब बस बारिश का मौसम आने वाला है। बच्चों आपको बता दें, जब हम छोटे थे तो इन बादलों को देखकर आपस में बातें करते थे कि बादल पानी लेने जा रहा है, अब बारिश होगी। तो भाई बारिश का मौसम तो आने वाला है, लेकिन बाबा जी भी कहानी लेकर बैठे हुए हैं सुनाने के लिए। तो आइए सुनते हैं कहानी, जिसका शीर्षक है पानी से भरी बदली।

बच्चों बाबा फिर आ गए लेके एक और प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है पानी से भरी बदली। बच्चों बहुत पुरानी बात है, एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे, देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली, देखो देखो। सारे बच्चे यही चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई, उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हवा ने कहा, हाँ तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। अच्छा तो चलो मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था, बदली उसमें अपना रूप ना निहार सकी। हवा उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई, गर्मी के कारण नदी की धारा भी सूख गई थी, कहीं कहीं कीचड़ या गंदा पानी बह रहा था। बदली नदी में भी अपना मुंह नहीं देख पाई, उसने सोचा समुद्र में तो पानी होता है, वहीं चलते हैं। उसने हवा से कहा, हवा बहन मुझे समुद्र की ओर ले चलो। हवा गर्दन हिलाती हुई बोली, ना ना मैं वहां नहीं जा सकती, समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे काम भी है। तुम भी सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। कौन सा काम? बदली ने पूछा। तभी काले बादलों का झुंड गड़गड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा। बदली ने उनसे भी पूछ लिया, बादल भैया क्या मैं सुंदर हूँ? बादल जोर से गड़गड़ाए और बोले, हमारे पास ये सब देखने की फुर्सत नहीं है, देखती नहीं हो, धरती सूखी है, हमें अपना काम करना है, प्यासी धरती पर पानी बरसाना है। अरे हाँ मेरा भी तो यही काम है, अपनी सुंदरता निहारने के फेर में मैं तो अपना काम ही भूल गई। ये कहकर बदली भी बादलों के साथ चल दी। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अपना काम पूरा करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया, वो फिर हवा में तैरने लगी। अपनी सुंदरता देखने की इच्छा उसकी मिटी नहीं थी। वो हवा से बोली, देखो हवा बहन मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मैं अपना सुंदर सा मुखड़ा देख सकूं। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था, अभी अभी बारिश जो हुई थी, मिट्टी पानी के साथ बहकर आई थी, तालाब का दर्पण धुंधला था, बदली अपना रूप ना देख सकी। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई, वहां भी वही हाल था, नदी में बाढ़ आई हुई थी, बदली उदास हो गई, वो रुआंसी होकर बोली, हवा बहन मैं अपना सुंदर चेहरा कहां देखूं? हवा क्या मैं सुंदर नहीं हूं?

हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो, तो चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हवा उसे खेतों और मैदान के ऊपर ले आई। उसने बदली को नीचे झांकने को कहा, पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं है। बदली नीचे देखकर बोली, वो देखो खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वो पानी में उछलते कूदते बच्चे, वो खुशी से झूमते पेड़, चहचहाते पक्षी, वो धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरों में तो तुम्हारा सौंदर्य है। ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरों पर फैली हुई सुंदरता को। वो खिल उठी, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी, हमें जरूर बताना, बाबा फिर आएंगे लेके एक और प्यारी सी कहानी। तब तक बाबा ये चलाओ।

0: पानी से भरी बदली। हाँ बच्चों, अभी ये कहानी आपने सुनी और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं।
1: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल,
2: अपने बच्चों को दीजिए सही माहौल,
3: पढ़ाई और मस्ती साथ साथ।
2: प्ले ग्रुप नर्सरी LKG और UKG में प्रवेश प्रारंभ।
3: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल से सीखकर बच्चों को मिल रहा है उनके मनचाहे स्कूल में एडमिशन। आप किस प्रतीक्षा में हैं? तुरंत संपर्क करें
1: स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल, मकरोनिया सागर।
2: फोन 07582359725।
0: भाई, इस अंतराल के बाद बच्चों हम बात करेंगे नवतपा के बारे में। कहते हैं बच्चों कि नवतपा के समय 9 दिनों तक लगातार तेज गर्मी पड़ती है और ये समय आमतौर पर 25 मई से शुरू होता है और 2 जून तक चलता है। इन दिनों बच्चों तापमान यानी कि गर्मी अपने चरम पर होती है। सही मायनों में कहा जाए तो नवतपा साल के सबसे ज़्यादा गर्म माने जाने वाले दिन होते हैं जो लगातार 9 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान तेज धूप और गर्म हवाएं चलती हैं। तो प्री मानसून और नवतपा के बारे में आज हमने बात की। अब वक्त और नहीं है कि हम आपके साथ और समय बिताएं, इसलिए हम यहीं विदा लेंगे आपसे। अगली बार ढेर सारी मस्ती और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा लिखकर जरूर बताइए। कार्यक्रम बाल सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर और पिन कोड है हमारा 470001 और 9770432297 ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखकर भेज सकते हैं। तब तक आप खूब खुश रहें, बढ़िया समय बिताएं, पढ़ाई करते रहें, अपने हुनर को निखारने का प्रयास करते रहें, बढ़िया किस्से कहानी सुनते रहें, गीत सुनते रहें और इन छुट्टियों का पूरा आनंद लेते रहें। साथ ही अपनी मीठी सी शरारतें जारी रखें। इन्हीं सब बातों के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी सागर।
3: बाल सभा के प्रायोजक थे स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल मकरोनिया सागर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बचना ए हसीनों इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में, अन्विता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंदगी अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आई एम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज़ में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है।

हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनज़र प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबैको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना केके की आवाज़ में, कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत

0: के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।
1: हम

0: 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।
1: जहां हमारा ताजमहल है।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था।

ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल विश्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल विश्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल विश्वास के लिए कई गाने गाए।

0: देव पराती काह करता दे, काह करता दे।
1: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
2: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

0: 1945
1: में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

0: सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।
1: कच्च

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी, अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला की।

से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जांच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयां और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उपार्जन हुआ। गेहूँ बेचने वाले किसानों को 1,507.64 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947.51 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगुआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों ने प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले IEC अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में ये संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जन संवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जन हानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। स्थानीय निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में 1 माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3,000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

ये है आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुन लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। नमस्कार, फोन करें गीत सुन में स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं।
1: जी सर नमस्कार, मैं ग्राम बिढ़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: लोकेंद्र भाई, गर्मी का मौसम तो अपने शबाब पर चल रहा है।
1: बिल्कुल सर जी, गर्मी का मौसम तो इस वक्त बहुत कवाब से चल रहा है सर जी, और उसमें खासकर क्या है सर जी, अपनी देखभाल सभी श्रोताओं से निवेदन है मेरा।
0: हाँ हाँ।
1: कि जो कि ज्यादा ही काम हो तो ही घर से निकले ना, तो अथवा घर पर रहें, और ज्यादा जरूरी काम हो तो देखो एक बोतल पानी का लेकर जाएं।
0: हाँ,
1: प्याज की गठिया जेब में डाल के जाएं और तौलिया मुंह से बांध के जाएं, सर पे बांध के जाएं, और बिल्कुल फुल बिल्कुल फॉर्म में ऐसा जाएं कि कहीं हवा ना लगे तो ठीक है, ना तो कोई ज्यादा जरूरत है तो घर से निकले, ना तो अथवा घर पर रहें।
0: खास बात यह है कि ऐसे में हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है आग से, तो
1: बिल्कुल पहुंचता है सर।
0: कभी भी जलती हुई तीली, जलते हुए अंगारे, कभी भी हमें आग को लेकर लापरवाह नहीं होना है। अपने गाँव में, खेतों में, जंगल में, शहरों में, सभी जगह हम आग से बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल रहेगा सर जी, कि मेरा तो ये भी निवेदन है सभी श्रोताओं से कि जो नरवी होती है उसकी गेहूं की, तो उसको मत जलाएं, उसको जोतकर उसको बखर दे तो अच्छी बात है, तो अपने आप खत बन जाएगा उसका।
0: बिल्कुल सही बता दें लोकेंद्र भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: सर जी फिल्म का नाम है दिल, उसका ये गीत है हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले।
0: तो आइए सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
2: जी सर नमस्कार, सर जयशिखर जी बात कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और आप अपना नाम भी बता दें।
2: सर मेरा नाम रवि अहरवाल है।
1: हाँ हाँ,
2: मैं जिला सागर मकरोनी राजाकरी से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, तो रघुवीर भाई क्या करते हैं आप?
2: सर मैं दिव्यांग हूँ, तो सर पढ़ाई करता हूँ। सर मैं इस बार मेरी प्रथम वर्ष सर एग्जाम हो गए।
1: बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, यानी किसी के भरोसे नहीं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं आप।
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो विषय कौन कौन से हैं, जान सकते हैं आपके क्या?
2: सर मेरा पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये और भी विषय सर।
1: बहुत ही बढ़िया
2: सर, आंखों से सब दृष्टि वाले।
1: चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी मन की आंखों को इतना तेज रखते हैं कि आपने यहाँ तक पढ़ाई करते करते पहुँच गए आप। और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुँचेंगे और अपने हौसलों को परास्त ना होने दें।
2: जी सर, बस आपकी यही दुआएं हैं सर, आपकी दुआ से।
1: बस जरूरत है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
2: जी जी, पर्यावरण को बिल्कुल जी।
1: खासतौर से गर्मी के मौसम में कोशिश करें हम कि आग लगने से पर्यावरण को क्षति होने से हम बचाएं। गांव में, शहरों में, कहीं भी आग ना लगने दें, क्योंकि एक आग लगती है उसके बाद बहुत सारे आगे जंगल भी जल जाता है, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बर्बाद कर देती है।
2: जी सर बिल्कुल, मेरा सर काफी सभी श्रोताओं से यही कहना है कि काफी से जैसे ज्यादातर वृक्षारोपण करें और पक्षियों के लिए मौसम में गर्मी के मौसम में पानी वगैरह।
1: सही कह रहे हैं,
2: ताकि उनके लिए कोई परेशानी का सामना न। अत्यधिक वनों की कटाई के कारण जो भी है टेम्परेचर में काफी बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें भी ज्यादा गर्मी और सारे कई कारण
1: सही
2: का सामने आ गया।
1: रघुवीर भाई बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
2: सर मेरे को गाना सुनना है जो भी है हक तेरा, तेरे हवाई कर दिया का हर रुआ, तेरे हवाई कर दिया।
1: तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जय शेखर जी, मुझे बहुत उम्मीद थी आपसे बात करने की। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
1: हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता हमसे बातचीत करते हैं, अपने दिलों की बात हम तक पहुंचाते हैं। अपना परिचय दें, आप कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं गोपालगंज से डॉक्टर अनुपमा राजपूत बोल रही
1: हूँ। अनुपमा जी हमें बताएं, क्या करती हैं आप?
2: तो हाउस वाइफ हूँ
1: जी। जी
2: लेकिन अपने शौक पूरे करती हूँ। घूमने का शौक है, बनाने का बहुत शौक है, तो फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत बड़ा है। मतलब इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है।
1: बहुत ही अच्छी बात है। निकट भविष्य में कहाँ घूम कर आई हैं आप?
2: अभी हम लोग पिछले महीने ही ऋषिकेश गए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। एक आंतरिक शांति मिलती है ऐसी जगह जाके।
1: बिल्कुल, ऋषिकेश और हरिद्वार की तो बात ही अलग है।
2: बिल्कुल, गंगा किनारे आप बैठिए, ऐसा लगता है पूरा जो भी टेंशन होते हैं सब निकल गए अपने शरीर।
1: और अनुपमा जी, वहाँ की प्रकृति भी बड़ी खूबसूरत होती है, पहाड़ दिखते रहते हैं, नदी में जो पानी आता है बह के, पहाड़ों से बर्फीली चट्टानों से बह के, बहुत ही सुंदर एहसास होता है वो
2: पूरा। मतलब कहीं नहीं घूमे हम लोग, सिर्फ ऋषिकेश रुके और उससे वहाँ का मजा लिया, क्योंकि आप भागते दौड़ते रहो, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, तो उसमें मजा नहीं आता।
1: अच्छा अनुपमा जी, हमें ये बताएं, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए?
2: पर्यावरण के लिए सबसे पहले तो पेड़ लगाना।
1: हाँ।
2: और इस बार हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में, मतलब अभी से 5-6-8 गड्ढे करके रखे हुए हैं। पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी रक्षा करके उसको बड़ा करना सबसे जरूरी काम।
1: बहुत ही अच्छी सोच है अनुपमा जी आपकी, और इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि आप अपनी फरमाइश का वो प्यारा सा गाना बताएं जो आप सुनना चाहती हैं।
2: मुकेश जी की आवाज में है तीसरी कसम फिल्म का, दुनिया बनाने वाली, बहुत पसंद है। मतलब कई बार देख चुके हैं वो फिल्म, लेकिन मन नहीं भरता उस फिल्म से।
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा लगा अनुपमा जी आपसे बातचीत करके, और हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर तीसरी कसम, इस फिल्म का ये गीत।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: हेलो
2: जी, स्वागत है आपका फोन करें की सुने में।
1: हाँ नमस्कार सर।
2: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: मैं राजूलाल मेहर, गांव बिलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
2: राजू भाई बताएं, क्या करते हैं आप झालावाड़ में?
1: गांव में रहते हैं हम, मेरा गांव है बिलवाड़ा, बिलवाड़ी।
2: तो काम धाम क्या करते हैं वहाँ पे आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
2: तो फिलहाल खेतों में क्या लगाते हैं आप?
1: सोयाबीन लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं।
2: अच्छा अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है आपके यहाँ?
1: अभी तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, मतलब खेत की हकाई जुताई कर रहे हैं।
2: और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या बताना चाहेंगे आप?
1: पर्यावरण के लिए तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावें।
2: और देखिए, अब कुछ महीनों बाद जब बरसात की रिमझिम रिमझिम फुहारें पड़ेंगी, उस वक्त अगर हम कोई छोटा सा पौधा लगा देते हैं और उसकी हम पूरी साल भर देखभाल करते हैं, तो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए ये हमारा एक अनूठा और अच्छा कदम होगा।
1: बढ़िया, अच्छा कदम।
2: आपने खूब लगाए हैं पौधे की? नहीं,
1: लगा रखे हैं ना।
2: कौन कौन से पौधे लगे आपके यहाँ?
1: सीताफल के हैं। हाँ हाँ। और नीम के हैं। और आम के सभी लगाने पर।
2: बहुत ही अच्छी बात है। राजू भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: आप सुना नमक हलाल का, जवानी जाने मन हसीने दिल रुबा।
2: आइए राजू भाई सुनते हैं आपकी फरमाइश पर नमक हलाल फिल्म का ये गीत।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: नमस्ते सर।
2: नमस्कार, फोन करने की सुनने में स्वागत है आपका।
1: जी, 3 महीना पूरा होगा सर।
2: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है चार्ली भाई, आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताएं चार्ली, क्या चल रहा है इन दिनों आपका?
1: अब इन दिनों तो सर बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है, मगर वो कहते अपना तो यात्रा के विचार कर लिए थे, यहाँ से वो जा नहीं पड़ा था।
2: अच्छा अच्छा,
1: अपन आज शाम को निकल रहे हैं ग्वाली घाट जबलपुर।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, रोड के गंगा दशहरा है जो, तो गंगा दशहरा से अपन एक रात रुकेंगे।
2: अच्छा।
1: हाँ
2: चार्ली भाई, एक काम कर सकते हो आप। एक व्यक्ति को हमने देखा था कि वो नीम के कुछ पौधों के बीज बना के रखते हैं और कई प्रकार के पौधों के वैसे अपने थैला में रख के चलते थे और साइकिल पर चलते हैं, और वो रास्ते में चलते चलते साइकिल से पूरे में फेंकते जाते हैं जहाँ जहाँ उनका मन होता है। तो देखिए कितना अच्छा है, आप भी बहुत पैदल चलते हैं, बहुत यात्रा पे जाते हैं, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं कि जहाँ भी जाएं पौधे लगा कर आएं।
1: जी बिल्कुल सर।
2: तो अभी आपने अपने गांव में क्या लगाया हुआ है?
1: गांव में लगे हैं सर, अपन तो जो अखार को महीना लगाते दवाई कर सकते हैं।
2: हाँ,
1: हाँ, नहीं है अभी।
2: हाँ
1: जी सर, का पर्यावरण बचा अपने हाथ ही में है।
2: हाँ
1: वृक्ष लगाए, पानी का उपयोग ना करें, कम से कम करें।
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहे
1: हैं। जाड़ो बने से बिल्कुल ही नहीं करो पानी को तो उपयोग।
2: सही कह रहे हैं आप।
1: हाँ।
2: तो चार्ली भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: मुस्कान फिल्म का सर।
2: मुस्कान का कौन सा?
1: जिस दिन

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: हेलो,
2: स्वागत है आपका, फोन करेंगे इस सुने में।
1: जी सर, नमस्कार।
2: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: सर मैं सूरज बात कर रहा हूँ।
2: सूरज कहाँ से बोल रहे हैं आप, पूरब से के पश्चिम से?
1: तहसील बादरपुर, जिला अशोकनगर, MP।
2: तो सूरज भाई बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं बादरपुर में?
1: सर हम खेती बाड़ी करते हैं।
2: अच्छा अच्छा,
1: हाँ।
2: तो खेतों में अभी क्या चल रहा है आपके?
1: अभी धान की तैयारी हो रही है सर।
2: अच्छा सूरज भाई, एक निवेदन है आपसे कि आप अपने आसपास के जितने भी किसान हैं, अपने गांव के, गांव से लगे हुए, उनसे बस एक ही निवेदन करें, एक ही अनुरोध करें कि एक छोटी सी चिंगारी कितने खेतों को, कितने फसलों को और कितने जंगलों को नष्ट कर देती है।
1: सर ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और कानून भी बना है इस पर तो, कि नरवाई जलाएंगे तो
2: हाँ,
1: उसे दंड का प्रावधान भी है।
2: और हम तो ये करें, लेकिन हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि ये देश, ये दुनिया आपकी भी है, हमारी भी है। कई साल लगाकर अपने आप को बड़ा करते हैं, बड़ी मुश्किल से हमें ऑक्सीजन देने के लिए।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।
2: तो प्रयास

0: करें कि ये काम आप कर सकते हैं?
1: बिल्कुल सर, अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों को समझा सके।
0: हाँ,
1: बाकी हम तो नियम का पालन करेंगे ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूछते हैं आपसे आपकी फरमाइश।
1: सर, आज दिव्य शक्ति का एक गाना है, आपको देखकर हमको ऐसा लगा, कुमार सानू हल्का याग्निक की आवाज में गाना है।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: हेलो सर, नमस्ते।
2: नमस्कार, फोन करेंगी सुन में स्वागत है आपका।
1: सर, हम कैलाश जूना से बोल रहा सर।
2: कैलाश भाई, क्या करते हैं जूना में आप?
1: सर, अभी तो हम खेती बाड़ी का काम करते हैं।
2: अच्छा, और इसके अलावा पर्यावरण के लिए कुछ विचार हैं आपके कि पर्यावरण को हम सुरक्षित कैसे रखें और क्या करते हैं पर्यावरण के लिए?
1: सर, पर्यावरण के लिए सर ये पेड़ पौधे लगाए।
2: हाँ हाँ
1: जी सर, इनकी देखभाल करें पेड़ों की।
2: और कभी भी खासतौर से गर्मी के मौसम में हमें छोटी सी भी चिंगारी आग की लापरवाही के साथ यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है।
1: जी सर,
2: क्योंकि खेतों में पड़ी एक चिंगारी, जंगल में पड़ी एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, और कितने आदमियों को लगना पड़ता है उस आग को बुझाने के लिए, और कितने पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं।
1: जी सर, आग से तो बचाना चाहिए सर।
2: तो कोशिश करें कि कभी भी हम अपने पर्यावरण को अनजाने तौर पर भी नुकसान करने से बचें।
1: जी सर, बचाएंगे सर पर्यावरण को।
2: आप अपने आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को, सबको जागरूक करें कि भाई हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तभी हमारा देश और हमारी ये दुनिया सुरक्षित रह पाएगी।
1: जी सर।
2: तो बता दें कैलाश भाई, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
1: सर, विवाह फिल्म को कोई सा भी गीत सुना दो।
2: सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म विवाह का ये गीत।

और श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है, गर्मी का मौसम है तो हम सतर्क रहें, अपने आप को भी गर्मी से बचाएं और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी हम गर्मी से बचने के उपाय जरूर सुझाते रहें। यही होगी मुद्दे की बात। हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार सोमवार सुबह 11 बजे से। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे विनोद यादव और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, जिसे प्रस्तुत किया जय शेखर ने।

0: बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: श्रोताओ, आज 11 बजे आप सुनेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता से मन की बात। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:55 होने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची

0: बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने

0: तीन बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना, और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
1: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है, और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पानी पीते रहिए, धूप में अगर

निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है। कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले
एक नौका हादसे

में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बनाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे
बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे

हमें जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था
समय के साथ

0: उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला। इस फिल्म का गाना गीतकार हैं पंछी जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं के और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनीति चौहान ने। फिल्म का नाम है रूढ़।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ये आवाजें के आलिशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज़ केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक के को याद किया।

बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का, और मेरा भी जी। इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूट कर न जाने कहाँ चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूट कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफ़र को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक

सिख द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं। जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है, जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बातें। ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए, बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछुओं में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछुओं प्रेमी युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रही हैं और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। और बाद में हमें लगता है कि अरे, थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े से भी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही है, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारे सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसक, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वही एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करते ही उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो है हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल

धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात। और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ता उम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठ कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूं मैं आपके लिए, क्या कहूं मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां मां लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत

से हालात पैदा करते हैं। जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सलिल चौधरी के संगीत से सजे गीत से। आवाज तलत महमूद की है और फिल्म है छाया।

0: फिल्म वेलकम जमुना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणकों द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का

ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निरवा और उसके तीन शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर, पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़क।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

मैया दो न जाओ मस्त पवन हो चंचल धारा मन में है बेचैन मंगा जैसा मैं जैसा गरती मन में है बेचैन मंगा जैसा मैं जैसा गरती बिना मुझको आई सहारा बिना मुझको आई सहारा मन की मैया

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिश्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर, यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके।

0: परिवार वाले, आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये है डोंगरगांव जिला।

राजनांदगांव से यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इसे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ दो हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना।
3: तेजी,
4: छोड़ दीजिए ना।
3: अरे अरे सुनो तो।
4: नहीं सुनती।
3: ओफो, अरे बात तो सुनो
4: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
3: ओ डेजी, डेजी माय लव।
5: डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
5: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
5: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों हो?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?

0: दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल
2: पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई, उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं। जोर से मत बोलिए। 2 दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में है, कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता के दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों ने जी?
0: जी
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
3: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है। 2-3 दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
3: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
2: बट दैट डजंट मैटर डॉक्टर, स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
3: अच्छा, मैं चलता हूँ। भाई कुछ जरूरी काम है, चलो डेजी।
2: ओके,
0: अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
2: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
2: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
2: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
2: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
2: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
2: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन नूनो ने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
2: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
2: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
2: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
2: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
2: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
2: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो। लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
0: मिल गया संतोष। बेनी, मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
1: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
1: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
1: ओह डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
1: नहीं।
0: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
1: लॉरेंस को? नो, नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
1: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो, क्या हुआ?
0: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात ऐसी। डॉक्टर, आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
1: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर, उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज।
1: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा, मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आधम की और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले, ये बेनी का प्रेत है।
4: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा, तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ, डॉक्टर रामदास,
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रेस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
2: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
2: समझा नहीं?
1: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
2: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
1: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
2: डॉक्टर।
1: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
2: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
1: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
2: स्टॉप दिस नॉनसेंस, आई से डॉक्टर।
1: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस, बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
2: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
1: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
2: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ, एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
1: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
2: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर,
1: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
2: नो नो नो, क्यों डॉक्टर,
1: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उड़न होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया, क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
2: डॉक्टर, डॉक्टर
1: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
2: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
1: बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
2: डॉक्टर, मुझसे गलती हो गई डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
1: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू।
1: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर।
1: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर ऑरेंस, मैं अब चलता हूं।
2: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
0: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
2: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
2: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
0: लॉरेंस, तुम अचानक,
2: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
0: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
2: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
0: मैं भी तुम्हें,
2: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
0: भुला दूंगी। हाँ, हमेशा के लिए भुला दूंगी। हाँ,
2: वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
0: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
2: हाँ, हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
0: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
2: डेजी,
0: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
2: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
0: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
2: डेजी,
0: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ले।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
0: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
2: सकते। डेजी, ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
0: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
2: ओह माय गॉड,
0: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
2: ओह नो,
0: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं

0: मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
1: विदा?
0: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
1: मैंने। डेजी, डेजी।
0: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
1: मेरी नजर टूट रही है डेजी। डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है डेजी।
0: नहीं लॉरेंस, नहीं, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो, करो बेटा। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए, लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना छुल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लंगारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है

0: कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
1: जी।
0: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
1: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार। क्या

0: कैसे पढ़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे?
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
0: जी,
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी।
1: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
0: ही हैं।
1: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी
0: जी, बिल्कुल।
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
0: जी,
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
0: अच्छा जी।
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
0: जी,
1: रावल जी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
0: जी।
1: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
0: अच्छा।
1: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
0: बन गए। ये कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें
1: गया? कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
0: जी,
1: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
0: बिल्कुल।
1: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
0: जी, एक्टर
1: एक्टर तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते

0: प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार,
1: हेमंत कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में, तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जाना हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई, जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है, तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने

0: बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
1: जी,
0: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
1: अच्छा जी।
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम थी।
0: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
0: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियां तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू
1: जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
1: अच्छा। सब
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं
1: जी।
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये

0: का फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
1: वो संबंध
0: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
1: जी जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही,
0: पानी बन के रही। हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी ये सबसे बड़ी बात है। जी
0: क्योंकि मेरी माँ को अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
1: मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई। हाँ, नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ, ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी लेकिन जब बापू से शादी हुई तो

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई,

0: प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग। फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था या उनकी क्या हाइट थी और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
1: जी।
0: और खैर वो तो बड़े इंसान थे लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
1: घर में एक आम पिता की
0: आम
1: तरह
0: पिता की तरह
1: जी।
0: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
1: जी, बिल्कुल,
0: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण।
1: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
0: जी, जी।
1: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
0: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊ जी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
1: जी,
0: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
1: एक कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
1: अच्छा।
0: तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई।
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
1: हाँ, जी।
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने?
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी,
1: जी,
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
1: बहुत कुछ।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे

0: थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन यही कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त, लिखी
1: उसी दौरान, उनके भीतर ये अंकुर पैदा
0: अंकुर
1: हुआ
0: पैदा
1: और वहां
0: हुआ।
1: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी, तो मितुल जी आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को

0: सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए दोस्त आए बापू के तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग। और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात,
1: सही बात
0: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा तो वो आप देखिए कि बच्चों के भाषा में लिखा है।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है, आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई। और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो
0: कोई गाना
1: नहीं होती।
0: जी बचता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था, और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ
1: जी।
0: तो आपके

0: अतुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
0: बिल्कुल। वो
1: एक छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
0: दर्पण में
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास। हाँ, आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए।
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे, या मुखड़ा देख ले दर्पण में। यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मितुल जी। तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो, मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं?
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं,
0: समझा लेते
1: कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में
0: कर्मों
1: ये सब
0: में कुछ
1: लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स कल नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। ये संवाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 121 करोड़ लाख रुपए की राशि के सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर अकोदिया सुंदरसी और पोचानेर के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुत

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है नेट बैंकों के उपयोग में सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखें खास ख्याल पर। दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने और समाज में तंबाकू से जुड़ी समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। इस दिन को मनाने की पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सन 1987 में की गई थी। दोस्तों, तंबाकू का सेवन आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसमें मुख्य रूप से धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट आदि शामिल हैं। तंबाकू का सेवन किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन युवाओं और किशोरों में इसका प्रचलन अधिक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तंबाकू के सेवन से शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सबसे आम बीमारी फेफड़ों का कैंसर है, जो कि तंबाकू सेवन करने वालों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा हृदय रोग, दांत और मसूड़ों की समस्या, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और पेट संबंधी रोग भी तंबाकू के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, तंबाकू का धुआं केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सरकारें, गैर सरकारी संगठन, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन रैली, सेमिनार, जागरूकता अभियान और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से

समाज और देश के लिए मूल्यवान योगदान दे सकता है। तंबाकू से दूरी बनाकर हम न केवल अपनी सेहत बचा सकते हैं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण भी स्थापित कर सकते हैं। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन और समाज की सुरक्षा की याद दिलाता है। तंबाकू से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी सेहत, परिवार और समाज की भलाई के लिए इस हानिकारक आदत से पूरी तरह बचना चाहिए। यदि हर व्यक्ति तंबाकू से बचता है तो समाज स्वस्थ, मजबूत और खुशहाल बन सकता है। इसलिए हमें इस दिवस का महत्व समझना चाहिए और इसे जागरूकता और परिवर्तन का अवसर बनाना चाहिए। आइए साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। अब लोग घर बैठे ही बिजली बिल जमा कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तथा खरीदारी भी कर सकते हैं। इन सभी सुविधाओं में नेट बैंकिंग का विशेष महत्व है। नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक से जुड़े अधिकांश कार्य बिना बैंक जाए आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी अर्थात ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। साथियों नेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। लोग किसी भी समय अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और विभिन्न प्रकार के भुगतान कर सकते हैं। परंतु यदि उपयोगकर्ता थोड़ी भी लापरवाही करता है तो साइबर अपराधी उसका बैंक खाता खाली कर लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ऑनलाइन सुरक्षा के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग कई तरीकों का उपयोग करते हैं। वे नकली कॉल, फर्जी वेबसाइट, ईमेल, मैसेज या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं। साथियों कुछ लोग लालच देकर लिंक भेजते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही व्यक्ति की सारी निजी जानकारी चोरी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नेट बैंकिंग का सुरक्षित उपयोग करने के लिए मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हो। जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या सरल शब्दों को पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इन्हें कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। साथियों समय समय पर पासवर्ड बदलते भी रहना चाहिए। इसके साथ ही मोबाइल में स्क्रीन लॉक और बैंकिंग ऐप में सुरक्षा सुविधाएं चालू रखनी चाहिए। साथियों सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई का उपयोग करके नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते। साइबर अपराधी इन नेटवर्क के माध्यम से आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। हमेशा अपने निजी और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग कार्य समाप्त होने के बाद खाते से लॉग आउट करना अवश्य चाहिए। साथियों आजकल ओटीपी फ्रॉड बहुत सामान्य हो गया है। बैंक हमेशा ग्राहकों को चेतावनी देते हैं कि ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। ओटीपी, एटीएम पिन और पासवर्ड पूरी तरह गोपनीय होते हैं। यदि किसी व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर भी इन्हें पूछे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि बैंक ऐसे फोन कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करते। साथियों यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो उसे तुरंत बैंक को सूचित

करना चाहिए और साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समय पर कार्रवाई करने से नुकसान कम हो सकता है। साथियों, सरकार और बैंक भी लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। दोस्तों, नेट बैंकिंग आधुनिक जीवन की एक उपयोगी सुविधा है, लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता हमें बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखे खास ख्याल पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की जनता से 7 प्रमुख अपील की गयी जिनको मानना हमारा दायित्व है। दोस्तों उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को कहा, इसके लिए आप निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें। दोस्तों सोने की खरीदारी ना करें, देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखने के लिए ऐसा करें। सोना विदेशों से मंगाया जाता है जिसे आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च होगी, इसलिए अपील की गई है सोना नहीं खरीदें। दोस्तों उन्होंने कहा विदेशी यात्राएं ना करें, अगले एक वर्ष तक इससे बचें ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। साथियों स्वदेशी अपनाएं, वोकल फॉर लोकल को अपनाने को उन्होंने कहा है। दोस्तों खाने की तेल की खपत घटाएं क्योंकि तेल का ज्यादा उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, साथ ही विदेशों से तेल मंगाने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। प्राकृतिक खेती अपनाएं, कृषि क्षेत्र में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती और जैविक खाद की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों इन सभी बातों का हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी विदेशी मुद्रा की बचत करनी है। दोस्तों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का, आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर चर्चा करने का। साथियों, भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ परिवार, संस्कार और रिश्तों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में माता पिता को भगवान के समान सम्मान दिया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का संदेश हमें यही सिखाता है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों, वास्तव में माता पिता का सम्मान ही हमारी संस्कृति का आधार है। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। वे हमें जन्म देने के साथ साथ जीवन जीने की सही शिक्षा भी प्रदान करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी खुशी के लिए वे अनेक कठिनाइयों और त्यागों का सामना करते हैं। दोस्तों, भारतीय परंपरा में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा करके आदर्श प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के आधुनिक युग में भौतिकवाद और व्यस्त जीवन शैली के कारण कई लोग अपने माता पिता को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन हमें हमारे माता पिता का ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यस्ततम जीवन में समय निकालकर कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए। यह हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, माता पिता ने जिस प्रेम और समर्पण से हमारा लालन पोषण किया है, उसी भाव के साथ हमें भी उनके साथ रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, माता पिता का सम्मान करने से परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनी रहती है। जिन परिवारों में बड़ों का आदर किया जाता है, वहाँ बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। हमें उनके विचारों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, कठिन समय में उनका साथ देना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सच्चे सम्मान का वे प्रतीक हैं। हमें कभी भी उनसे कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और यही हमारी सभ्यता की पहचान भी है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए अब आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब

0: रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं।
1: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है
2: मैं सागर हूं।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
3: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
1: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
4: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
5: और नासिर का
1: नमस्कार। सागर का हर चौराहा हर गली अपने में कई कहानियां समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियां हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी। आज के इस अंक में बात होगी पौधारोपण की। हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम पौधों को रोपें। हम सबको हरियाली पसंद है और इस हरियाली के लिए जरूरी है पौधों को लगाना। बस बरसात का मौसम पास आता जा रहा है तो संकल्प लें कि हम पौधों को रोपेंगे।

0: आइए बात करते हैं नगर निगम कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री जी से।
1: जैसे जैसे बरसात का सीजन आएगा वैसे वैसे हम पौधारोपण की तरफ जाते हैं, तो ये जो वक्त है ये सोचने का है कि ये सागर आप खुश होते हैं हरा भरा हो गया है, इसको और हरा भरा करने के लिए हमें क्या करना होगा?
2: देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सागर जो है बड़ा हिली एरिया है, देखने में बड़ा खासकर बारिश में बहुत सुंदर लगता है, और उसकी जो सुंदरता का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो बहुत अधिक मात्रा में, इस ग्रीनरी को और अधिक जो है मेंटेन रखने के लिए, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखने के लिए और बाकी तमाम तरह की चीजों के लिए भी सुंदरता के साथ साथ कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमारी डेली जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे फूल के पौधे हो गए, कुछ मेडिसिन वैल्यू के पौधे होते हैं, कुछ से हमारे नीम और पीपल वगैरह की अपनी एक धार्मिक वैल्यू भी है। तो सभी लोगों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें और पृथ्वी को जो है सुरक्षित और संरक्षित रखें। हम ये चाहते हैं कि सागर नगर निगम के सभी व्यक्तियों से आग्रह है कि हम सागर को नंबर वन बन बनाए, उसके लिए जो है नगर निगम के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आप अपना लोग सहयोग करें। आपका पहला सहयोग यही है कि इधर उधर ना थूकें, खुले में जो है शौच ना करें, अपने घर का जो कचरा गीला सूखा है वो उसको अलग अलग रखें और कचरा गाड़ी में ही दें, जिससे कि सागर को साफ और सुंदर बनाने में मदद मिले और सागर को नंबर वन बनाने में जो है आपके जो प्रयास रहेंगे उनसे हम निश्चित रूप से सागर को नंबर वन बनाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है, इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
4: और नासिर को।
3: नमस्कार।
4: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
3: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
5: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
3: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
4: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
6: मैं सागर हूँ। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:40 हुए हैं। पेश कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चंदन दास की गाई इस गजल के साथ। एल्बम है एतबारे वफा।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम संगीत सरिता में, और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मुनीर न्याजी का लिखा कलाम, स्वर और संगीत परवेज मेहंदी का।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
2: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
8: संदेश के बाद कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर का लिखा हुआ ये कलाम। स्वर है महेंद्र कपूर का, संगीत है नौशाद का, एल्बम है दिल की आवाज़।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्वागत है तमाम सुनने वालों का, और इस कार्यक्रम की पहली पेशकश बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम

0: टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब जीएसटी भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: अंतराल के बाद सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं मजरूह का लिखा गीत। संगीत है नौशाद का, आवाज है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम साथी।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं साहिर का लिखा गीत किशोर कुमार की आवाज में। संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है एक महल हो सपनों का।

से। किशोर कुमार की आवाज अभी आपने सुनी, बोल थे साहिर के संगीत रवि का। फिल्म का नाम था एक महल हो सपनों का। इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गणेश वंदना। कलाकार हैं बाबूलाल मस्ताना।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है लोक रंग कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये श्रृंगार गीत। कलाकार हैं देशराज पटेरिया।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग, और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये दादरा। कलाकार हैं लक्ष्मी त्रिपाठी।

0: लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी।

0: चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रेडी करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लोकरंग कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:20 से। ग्राम सभा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:30 से। रात्रि 8 सुनिए का कार्यक्रम सुर्खियों में, इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। डगर विकास की ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 से। विषय होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, ये आकाशवाणी छतरपुर का योगदान होगा, इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 8:45 से। मन चाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 9 से। रात 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिली किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में

0: इस अंतराल के बाद।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: अंतराल के बाद आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में विषय होगा मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य हेतु उपाय। और विशेषज्ञ होंगे श्री मयंक। लोक संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:15 से। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा बिंदिया सुबह 8:30 से। सुबह 9:50 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 से। इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 पर प्रसारित होगा फरमाइशी कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा सुबह 11 से। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा शाम 5 से। इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी होगा शाम 5:02 से। इसे भी हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 8 सुनिएगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:20 से। मनचाहे गीत पेश किया जाएगा ये कार्यक्रम रात 9 से। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा।
2: हाँ जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
4: कूल रहो।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में

0: छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मद्दी टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और 82183263386 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
3: दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला, गौशाला के लिए 3-4 प्रकार जो पंचायत गौशाला खोलती है गौशाला में वहां मदद कर रहे हैं। नगरी निकाय में पहले पिंजरापुर खड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरापुर खड़क बनाने की जरूरत नहीं, गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो हिरक न पहुंचा देता।

0: तो कोई बात नहीं, वही गौशाला नगरी निकाय जहाँ नगर निगम भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर ग्वालियर में तो 9000 की किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साझी के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति मध्य हस्ता जो रिकॉर्ड प्रतिदिन का था उसको बढ़ाकर के 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ा करके जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जा करके हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए।
1: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांतिपनी विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं नंदराम पटेल और साथियों के स्वर। सुनते हैं ये लोक भजन।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
3: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना

0: योजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:30 होने को हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: बुंदेली समाचारों के बाद ग्राम सभा में अब बारी है हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम की। हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज सक्सेना। जैसा कि आज हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में हमने आपको बताया था, आज हमारा विषय है आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा, जो कि कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा जिला विदिशा से हमारे साथ हैं। और आप हमारे फोन नंबर ध्यान से लिख लीजिए। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है एसटीडी कोड 0755 के बाद 2660902, एक और नंबर 2660903। इन दोनों नंबरों पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में। जैसा कि हमारा विषय है आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। सवाल आए उससे पहले सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि उर्वरक प्रबंधन से क्या आशय है।
1: देखिए, सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि उर्वरक प्रबंधन का मतलब ये है कि जब हम जैसे खरीफ फसल आ रही है, उन खरीफ फसलों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पानी पड़ती है, जब पानी बरसात के दौरान बहुत सारे उर्वरक हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें ये क्या करती है, पानी के साथ बह जाती है। यदि आपने इसका सही प्रबंधन नहीं किया तो आपका उर्वरक डालने का कोई मतलब नहीं रह जाता, विशेष रूप से बरसात सीजन। तो यहाँ पर हम किसान भाइयों को समसामयिक कार्यों के अलावा हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस ये रहेगा कि उनमें जो उर्वरक है उसमें किसी भी प्रकार का उर्वरक की जो क्षमता है वो सही बनी रहे, उनका सही उपयोग हो, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये कि बरसात के मौसम में खरीफ सब्जियों

0: फसलों में, सबसे पहले हम उर्वरक का अपना लेने का तरीका, उनको संरक्षित करने का तरीका, उनका प्रबंधन के तरीके पर अपन ध्यान दें।
1: ध्यान देंगे। हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनसे एक बार बात करते हैं।
2: हेलो
1: हेलो,
2: गुड्डू चौबे बोल रहे बमोरी ढूंढा जिला सागर से।
1: गुड्डू चौबे जी बमोरी सागर से बोल रहे हैं, कैसे हैं गुड्डू जी?
2: बढ़िया है साहब, खूब अच्छे हैं।
1: खूब अच्छे हैं। अबे मौसम बिगड़ो है तो सागर को क्या हाल है?
2: और बाद रहे हैं, कहूँ कहूँ आसपास पानी गिर गया, कहूँ तो थोड़ी बहुत ओरे ओरे गिर गए, कहूँ आधी तूफान चली है।
1: अच्छा अच्छा, तो
2: जहाँ हम है उसे कचूरी बहुत बूंदा पानी भाई।
1: चलो अच्छी बात है। अब वो तपा लगे हैं दादा, तपा में पानी गिर वो ठीक नहीं हुए है ना?
2: हाँ खराब है,
1: खराब है। अब वो कह देना कि जेठ मास जो तपे निराशा, तो जानो वर्षा की आशा।
2: हाँ, अभी तो जो बने हैं वे सब जरूरी है, तपा भी जरूरी है सब।
1: अब जा बताओ कि खरीफ में का योजना बनाई है? आज को विषय जो है वो जो ही है कि खरीफ में अपने
2: पूछा है साहब, जैसे अपन सोयाबीन बहने तो कम से कम खाद डालने या बिना खाद को कैसे हो जाए?
1: बड़ो अच्छो नोनो सवाल पूछो है सर, बताइए।
0: हाँ देखिए गुड्डू भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की कम मात्रा का प्रयोग करना है, क्योंकि ये दलहनी फसल है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद होता है।
1: नाइट्रोजन से मतलब यूरिया,
0: यूरिया यूरिया जो जिसको नत्रजन अपन हिंदी में बोलते हैं, वो पौधा खुद बनाता है। तो यदि आप उसको ज्यादा प्रयोग कर दोगे तो पौधे में बीमारी लग सकती है, इसलिए आप उसमें कम से कम नाइट्रोजन का प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज्यादा प्रयोग न करें, ये हमारे किसान भाइयों को हम बताना चाहते।
1: धन्यवाद गुड्डू जी हमें फोन करने के लिए। और जैसा कि बड़ा अच्छा विषय अभी हमारे किसान भाई ने पूछा कि कैसे खाद डालें, कितनी मात्रा में खाद डालें, और उन्होंने एक शब्द और बोला कि बिना खाद के लगाएं क्या? तो बिना खाद के जो लगाना चाहते हैं सोयाबीन, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
0: देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया वास्तव में, कि हम सभी किसान भाइयों से रासायनिक उर्वरक की तो हम कम आशा करते तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ बनी रहेगी। लेकिन खरीफ मौसम में जो फसल है उनमें यदि आप बिना खाद के करें, विशेष रूप से गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: सही बात। अब वो ये कहते ना कि खाद पर है तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत।
0: हाँ बिल्कुल सही।
1: खाद जरूरी है पर जैविक खाद जरूरी है ना। हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में।
3: नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
3: हरदयाल जाटव जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
1: हरदयाल जाटव जी बोल रहे हैं शिवपुरी से ना?
3: हाँ
1: जी। कैसे हैं आप वहाँ, मौसम कैसा है?
3: मौसम तो बढ़िया है, दो दिन अच्छा पानी बरस गया, हम भी पानी।
1: अच्छा अच्छा जी जी जी, मैं वही जानना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पूरे मध्य प्रदेश से हमारे पास फोन आते हैं, पर मौसम कहाँ कैसा हो रहा है ये भी हमारे श्रोताओं को पता चलता रहे। क्या योजना है खरीफ में आपकी, बताएं ना?
3: आज की ये समस्या की मानी जो वर्षा होनी, जो मूंगफली देते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, माने कौन सा बीज और कौन सा खाद डालना चाहिए।
1: जी जी, मूंगफली की बुआई का सही समय कब शुरू हो रहा है और कौन सी वैरायटी?
0: हाँ बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। खरीफ मौसम में मूंगफली को आप लगाएं, क्योंकि मूंगफली तिलहनी फसल है, तेल प्राप्त होता है इससे, और इस फसल को आप जितने बढ़िया सही समय पे आप लोग उत्पादन उतना अच्छा मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप इस जुलाई में, जुलाई के सीजन में जब भी आप 10-15 जुलाई के बाद आप उसका प्रयोग, आप उसका बुवाई कर सकते हो। उसमें बहुत सारी बुवाई, उसकी वैरायटी है, उनकी जाति बहुत गुच्छेदार आती है और कम गुच्छेदार आती है। आपको जिस प्रकार का चाहिए, बड़े दाना चाहिए या छोटा दाना चाहिए, आपको जैसी वैरायटी आपको चाहिए आप वहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से ले लें। शिवपुरी में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जो अच्छी वैरायटी मिले, वैसे बहुत सारी ब्रैग है, बहुत सारी वैरायटी है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको वहाँ मिले या न मिले ये अलग बात हो जाती है, लेकिन आप कृषि विज्ञान केंद्र से वो आप जाति का प्रयोग करके उसको बुवाई करें जुलाई के महीने में।
1: धन्यवाद फोन करने के लिए। सर जैसे मूंगफली की बात करी गई है, मूंगफली लगाने के लिए वैरायटी तो ठीक है, वैरायटी मिल जाती है, लेकिन मूंगफली लगाने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या है?
0: देखिए मूंगफली हमारे जो किसान भाई है, जैसे अपन ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, सेम वो ही तरीका है, उसका कोई अलग से तरीका नहीं, उसका भी बीज होता है, उस बीज को बोया जाता है।
1: नहीं, दूरी कितनी,
0: दूरी
1: कितनी?
0: उसकी दूरी में बीज की उसकी कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बीज लगाया जाता है। और सबसे पहले हमारे किसान भाइयों खेत की तैयारी कर ले, उसमें यूरिया, फास्फोरस और पोटास पहले डाल दे, यूरिया टुकड़ों में डाले, 50% यूरिया पहले डाले, उसके पास 50% डाले, उसको नाइट्रोजन फास्फोरस पूरी मात्रा में डाल के, और फिर उसको 2-3 बार डाल के, फिर चौथे दिन बाद आप बीज की बुवाई आप उसकी कर सकते हैं।
1: एक और कहा जाता है कि लाल मिट्टी हो, कंकर वाली मिट्टी हो, ये मूंगफली के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है, लाल मूंगफली हो या लाल मिट्टी के अलावा यदि आपकी थोड़ी सी रेतीली मिट्टी हो,
1: हाँ,
0: उसमें मूंगफली बहुत अच्छी होती है। तो हमारे किसान भाइयों को
1: जी
0: इस पे ध्यान दे।
1: अगले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। हेलो
4: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
4: सक्सेना जी, जयराम जी।
1: जयराम जी, मैं समझता हूँ ये गोलू भाई का तो नंबर नहीं है।
4: हाँ सर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
1: बहुत बहुत लंबे समय बाद आपकी आवाज कान में आई है गोलू भाई, है ना
4: जी। बता सर, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया हैं। और आपके वहाँ कैसी स्थिति है सागर की?
4: बस सर, हम आए थे अभी, मतलब 5 बजे एक झला पानी गिर गया है जी, मतलब जामाल चलो बह करो तो।
1: अच्छा,
4: और कहा है तो
1: अब जो है ना कि मानसून जो है अब करीब आज जा रहा है, तो ये प्री मानसून कहा थे जाके बरसात तो शुरू हो जाते, और वैसे भी 2 जेठ हैं, तो जेठ एक तो निकल गए है, तो है ना भैया, तो अब जो वैसे तो जो
4: हाँ, मैं ग्राम मिजोरा जिला सागर से गोलू हरवार बात कर रहा हूँ। सर
1: अच्छा,
4: ये हमारा प्रश्न ये था सर जी, मतलब जो मक्का का बीज रहता है, जैसा कि हम लोग भाटुआ में मक्का बोते हैं, तो वहाँ पे मतलब जिलक जाती जमीन, कोई ऐसा बीज नहीं है कि जमीन मतलब जिलक जाती तो वो मक्का का पेड़ मतलब खराब ना हो?
1: भटुआ में मतलब के भटुआ बोले तो ऐसी जमीन जो
4: हाँ मतलब एकदम वो ज्यादा मतलब जमीन झिलक जाती
1: है, झिलक जाती, पानी नीचे से ऊपर आने लगता है, फिर वहाँ हाँ, जब लगाते मतलब, हैं तो मक्का सड़ने लगती है।
4: जी जी,
0: तो आपका आपका आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब
1: मक्का सड़े ना, ऐसा कोई बीज
4: कोई क्वालिटी बताइए सर।
0: देखिए, इस प्रकार की मिट्टी में जब भी आप बीज बोए, कोई सा भी बीज बोए, आपको बीज उपचार करके जरूर बोए आप एक बार, थायरम एक उससे थायरम से या बेवेस्टीन से आप बीज को उपचारित करें, और उस बीज को आप कल्चर जरूर डालें, चाहे वो आप एजो स्पायरम कल्चर ले ले, या उसको आपको जो भी हो PSV ले ले, उस कल्चर से उपचारित करके यदि आप बोओगे तो बीज नहीं सड़ेगा आपका।
4: अच्छा अच्छा
1: जी,
4: क्योंकि सर हम आए थे मतलब काफी ज्यादा सूखे घास वाले ये खेत ज्यादा मिलेंगे।
0: हाँ, तो कोई बात नहीं है, आप होने दो, उसमें आप बीज को उपचारित कर दे एक बार, फिर देखिए आपको ये दिक्कत नहीं आए।
1: वैसे तो आजकल जो बीज किसान भाई खरीदते हैं उपचारित ही आता है,
0: वो सर उपचारित आता है, लेकिन
1: होता है।
0: वो उपचारित क्या है, जब हम बीज को उपचारित करते हैं तो वो केवल दवाई उसमें मिल के आते हैं, जबकि अपन को FIR सिस्टम से उपचार करना, चले पहले फंजीसाइड से, फफूंदनाशी से, फिर कीटनाशी से, फिर कल्चर से, इस प्रकार से तीनों से उपचारित करके बोगे तभी आपका बीज संरक्षित रह पाया, नहीं बरसात में बहुत जल्दी खराब हो जाता
1: है। वाकई ये भी सच बात है, ये मक्का जो है मोटे अनाज में आती है, और ये थोड़ा सा कम पानी वाली जगह पर लगाने वाली फसल है,
0: कम पानी तो जगह पर थोड़ा सा उथला भी रहता,
1: उथला भी रहना चाहिए,
0: जैसे और बीज 5 सेंटीमीटर पे इसका कम से कम 3-4 पे आपको लगा।
1: तो वही है कि किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि हर जमीन में हर फसल नहीं लगाई जा सकती, हमें फसल की स्वभाव को, उसके नेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा,
0: प्रकृति को समझना,
1: उसको भी समझना होगा। हमारे अगले श्रोता भी जुड़ गए हैं, जानते हैं कहाँ से कॉल है। हेलो
5: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कहाँ से कॉल किए हैं?
5: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: राकेश जी, आपका शिमला से फोन आता है, बहुत अच्छा लगता है, हर रविवार आप फोन करते हैं, कैसे हैं सर?
5: बढ़िया हैं, अभी बारिश हो रही थी, और क्या बोलते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो किसानों के लिए जो जानकारी मिलती तो हम उसका लाभ लेते हैं, तो आकाशवाणी भोपाल के माध्यम से।
1: जी जी, मैं आपकी इस भावना की बहुत इज्जत करता हूं, और मैं आपको बता दूं कि हमारी आकाशवाणी ये पूरा रेडियो जो है ना, इसके 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं
5: जी, 90 वर्ष पूरे होने वाले,
1: 90 वर्ष से जी,
5: पहले से बधाई शुभकामनाएं।
1: तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप जैसे सुधी श्रोताओं से ही रेडियो है ना
5: जी।
1: आपका सवाल बताइए राकेश जी।
5: जी, मेरा ये सवाल है कि हमने अभी सोयाबीन लगाई थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा हम खाद डालते हैं तो उसमें

0: हमें किस क्या क्या प्रावधान का क्या क्या हमें रखनी पड़ेगी।
1: शिमला में आप सोयाबीन लगाते हैं?
0: जी लगाते हैं, हम सोयाबीन लगाते हैं, पर हिमाचल में अलग किस्म की सोयाबीन होती है जो आपके इधर की नहीं होती है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए पूछा कि सर बताइए।
2: देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि सोयाबीन में आप उर्वरक प्रबंधन, आपको मैं एक बार मैंने और एक किसान को ही बताया था, आपने शायद सुना हो कि हमारी सोयाबीन एक दलहनी फसल है और इस दलहनी फसल में नाइट्रोजन नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य होता है, तो इसमें विशेष रूप से आपको यह ध्यान देखने की जरूरत है कि आपको नाइट्रोजन का कम से कम प्रयोग करना है, जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना है और दाने में चबक आए इसके लिए आपको पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। तीनों जो उर्वरक है आपको सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। चौथी सबसे मुख्य बात यह है कि ये दलहनी फसलों में और खरीफ के मौसम में इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको गोबर की खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट ये हमेशा डाल के खेत में रखना है, क्योंकि अभी आपने डाल दिया होगा गर्मी में और अब आप उसकी जुताई करके समतलीकरण करने का काम करके और आप उसको यदि बुवाई सही तरीके से करते हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है कि आप बीज को उपचारित करके जरूर बोएं।
1: धन्यवाद राकेश जी हमें फोन करने के लिए। और सर जैसा कि सोयाबीन की जब भी फसल की बात आती है तो हमेशा किसान भाई उसमें दो चीज़ें करते हैं, एक तो क्या सिंगल सुपर फास्फेट का पहले भुरकाव किया और उसके बाद में उन्होंने अपना बखर वगैरह कर देते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट का डोज क्या होता है?
2: सिंगल सुपर फास्फेट का डोज आपको कम से कम 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर आपको डालना पड़ेगा, इतनी मात्रा में आपको 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना पड़ेगा और नाइट्रोजन का आपका प्रयोग 40 से ज्यादा न करें, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर का प्रयोग करें। इसमें दिक्कत क्या आती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, यदि आप कम मात्रा में नाइट्रोजन डालोगे तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि नहीं हो पाएगी,
1: बिल्कुल,
2: और फास्फोरस कम डालोगे तो वृद्धि जड़ों की नहीं हो पाएगी, और पोटास के लिए आपको दानों की क्वालिटी, इसलिए तीनों फर्टिलाइजर का हमारे किसान भाई को प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जिन किसान वार्ता थोड़ा सा मिट्टी की जांच भी करवा ले, यदि मिट्टी की जांच में ये पाया जाता है कि उनकी जो मिट्टी यदि अम्ली है या क्षारी है उनकी, तो क्षारी मिट्टी के लिए आपको कम से कम जिप्सम का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना जरूरी, क्योंकि इसमें सल्फर तेल बनता है तो तेल वाली फसलों में सल्फर बहुत आवश्यक होता है।
1: अच्छा ये भी है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि बखरनी हो गई है उसके बाद में फिर डालते हैं, कुछ किसानों का ये है कि पहले डाल देते हैं उसके बाद फिर बखर कर देते हैं।
2: नहीं, सही तरीका तो पहले खेत की तैयारी करें हमारे किसान भाई अच्छी तरह, जब खेत पूरी तरह से तैयार हो जाए तो बीजों का बढ़िया अंकुरण प्रतिशत देख के और एक उपयुक्त समय देख के आप बुवाई कर सकते हैं, खाद आपको पहले ही डालने पड़ेगी।
1: एक और बड़ा ज्वलंत सवाल हमारे सारे किसान भाइयों के दिमाग में इस समय होगा और मेरे मन में भी है, वह यह कि इस समय जिस तरह से मौसम विभाग का बार बार अलर्ट आ रहा है कि ब्रेक लंबे पड़ेंगे, मतलब पानी बारिश होगी और फिर रुकेगा, ऐसी स्थिति में कौन सी किस्म सबसे बेहतर मानते हैं आप?
2: देखिए हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत सारे सोयाबीन की वैरायटी निकाली है, उसमें आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक तो जल रुकना नहीं चाहिए, सोयाबीन की फसल में पानी जैसा कि आपने बताया बहुत स्पेल ड्राई स्पेल आता है, तो पानी ज्यादा भी बहुत ज्यादा नुकसान है और कम भी बहुत ज्यादा नुकसान, ये दोनों स्थिति हमारे किसान भाइयों को समझना चाहिए। यदि किसान का पानी ज्यादा हो जाता है तो कुछ नालियों का निर्माण करके पानी को बाहर निकाल दे, और यदि ड्राई स्पेल होता है तो ऐसी व्यवस्था हमारे किसान भाई को रखे कि उसमें पानी दे सके, इसीलिए इसके लिए हमारे GS 335 बहुत सारी वैरायटी है, ब्रैग करके एक वैरायटी बहुत अच्छी आती है वो आप डाल सकते हो, 2759 आप डाल सकते हो, 2760 है वो आप दे सकते हो, बहुत सारी वैरायटी है जिनका कि हमारे किसान भाई प्रयोग करके खेत में उपयोग कर सकते हैं।
1: और मैं समझता हूँ कि मैड नाली पद्धति से जो बोने की बात कही जाती है वो
2: भरो और बेड राइज वाली जो है
1: जी,
2: वो उसका भी प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं, उनका भी हमारे किसान भाइयों प्रयोग करना चाहिए।
1: और मैं तो अपनी तरफ से किसानों से ही कहूंगा कि पूरे खेत में अगर आप सोयाबीन नहीं बो रहे हैं थोड़ी सी जगह बचा लें, वहां ढाल जहां पर हो तो वहां एक गड्ढा पहले से अभी बना के रख लें, मौसम अभी खुला हुआ है, बारिश आएगी तो कम से कम आपको एक लास्ट मोमेंट पर लगता है बिल्कुल आखिर में कि अब क्या करें, बारिश नहीं हो रही है, पानी वहां से आपको मिल सकता है। और बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे मित्रों, हम आपसे कहते हैं कि आप हमें फोन कीजिए, बहुत अच्छा समय है, सर हमारे साथ जुड़े हुए

0: और देखिए एक हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में।
1: जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं नरेंद्र डांगी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर तहसील शामपुर से।
0: नरेंद्र जी कैसे हैं?
1: सर बढ़िया।
0: आप तो बहुत पास से फोन लगाते हैं, पर अच्छा लगता है नियमित रूप से आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमें फोन करते हैं। और क्या योजना है आगे खरीफ की?
1: सर मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि हम सर रवि सीजन में एक एकड़ में 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं सर, वो यानी वो अगर खरीफ फसल में वो खाद काम देगा कि डालना पड़ेगा?
2: नहीं नहीं, देखो आपको दोबारा खाद, आपने दोबारा खेत की तैयारी की है तो क्या होता है, जैसे आपने रवि में जो खाद डाला था ना, वो तो बहुत सारी गर्मी, आप देखो कितनी गर्मी पड़ी, उस गर्मी में हो सकता है ऊपर उड़ गया हो, एवोपरेट हो गया, और नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं तो वो चला जाता है, इसलिए आपको दोबारा ही डालना पड़ेगा। और ये सब खाद आप तीनों संतुलित मात्रा में, खादों के अलावा आपको कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व, कुछ द्वितीय पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम सल्फर भी आपको एनपीके के साथ डालना पड़ेगा।
0: सीधी सी बात है, नई यात्रा कर रहे हैं तो नया टिकट लेना पड़ेगा। है ना, धन्यवाद फोन करने के लिए। सर सोयाबीन की बात हो गई है, धान की बात नहीं हुई है। वाकई खरीफ में धान का रकबा बहुत बढ़ जाता है। धान में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो कहा जा रहा है कि बारिश रुक सकती है या बारिश लंबा ब्रेक ले सकती है, वहां धान में क्या सावधानी बरते?
2: देखिए सक्सेना साहब, अब कुछ धान की ऐसी वैरायटी आएगी, जैसे अपन गेहूं बोते हैं ना, ऐसी भी वैरायटी धान की आएगी। पहले हम धान का मचेला तैयार करते थे, पानी भरते थे, बहुत सारी
0: बिचड़ा तैयार होता था।
2: अब वो, अब किसानों का वो बहुत कम हो गया।
0: हाँ।
2: अब किसान केवल पानी, जैसे ही पहला पानी पड़ता है खेत की तैयारी करके वो किसान डायरेक्ट बो सकता है। फिर यदि भगवान ने पानी दे दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लगा के आप उसको ज्यादा से ज्यादा पानी जरूरत है, 3-4 पानी आप दे सकते हो, उससे भी आपका धान हो सकता है। अब इस प्रकार की बहुत सारी वैरायटी आ गई, इसलिए हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह मचेला बना दे तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाते तो भी आप हल्की, जो हल्के क्या कहते हैं, सीड ड्रिल से भी आप उसकी बुवाई
0: कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उर्वरक प्रबंधन की अगर बात,
2: हाँ, उर्वरक प्रबंधन में इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तीनों तरह के उर्वरक आपको डालने पड़ेंगे, संतुलित मात्रा में डालने पड़ेंगे, मिट्टी की जांच करके आपको डालने पड़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, कम से कम 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, 40 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, केजी पर हेक्टेयर आपको पोटास फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी, और 30 से 40 केजी पोटास की जरूरत पड़ेगी।
0: अच्छा, इस समय धान की नर्सरी डालना शुरू हो चुके हैं?
2: हाँ, नर्सरी कई लोगों
0: के बारे में बताइए
2: ना। नर्सरी डाल दी हमारे किसान भाइयों, हम बताते हैं नर्सरी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, और कम से कम 1 हेक्टेयर में कम से कम 10,000 पौधों की इस प्रकार की नर्सरी तैयार करें आप, जिससे कि 40 से 50 हजार पौधे जिसमें हों, और उसका पौधा नर्सरी में जिंक का भी प्रयोग करें, एनपीके का तो करें ही, और स्वस्थ पौधे हैं उसमें किसी प्रकार का रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, ऐसे पौधों को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, और नर्सरी का बिल्कुल रखरखाव अच्छी तरह से हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए।
0: हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, जानते हैं कहां से कॉल किया है। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
3: जी सर, ग्राम देवपुर पोस्ट बमना जिला छतरपुर से बोल रहे हुकम चंद यादव।
0: हुकम चंद यादव जी, छतरपुर से आपका फोन है।
3: जी जी,
0: कैसे हैं? बढ़िया हैं
3: जी। जी सर,
0: जी जी, हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन को लेकर, क्या योजना है आपकी, खरीफ में कौन सी फसल लगाएंगे आप?
3: जी सर, यही पूछ रहे थे कि सोयाबीन पिछले साल जुलाई में 2 क्विंटल सोयाबीन बच गया, तो सर जी बोरियन में अपना स्लो धरो तो वो बह सकते हैं कि नहीं आप?
0: वो नहीं पाए थे पिछले साल का सोयाबीन है, कौन सी वैरायटी है?
3: जी सर मालूम नहीं, लेकिन वो नहीं की 2 क्विंटल बच गई थी, सिली सिलाई जाएंगी धरी, बो सकते हैं या नहीं बो सकते?
2: देखिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सोयाबीन की फसल का हमने खुद ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि यदि 10 बोरों के 4 बोरों के नीचे वाला बोरा है उसको भी यदि हम बोते तो भी वो नहीं निकलता है साहब, सोयाबीन कैसा बेकलू बेकार हो जाता है। आपका बीज किस स्थिति में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, आप दूसरा नया बीज लेके बोए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं कि उसका क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति रही है। फिर भी आपको बहुत सारी,
0: और मैं आपको एक बात बताऊं भैया, आपने किस भाव का लिया था बीज?
3: वो 70 रुपया किलो लिया था सर जी।
0: 7000 के भाव का लिया था ना, 9000 का तो अभी रेट चल रहा है, बेच दो उसको, बेच के नया बीज खरीद लो।
2: अभी मैं आपको बताया तो जेएस 95-60 ले लो, 20-29 ले लो, 20-34 ले लो, जेएस की बहुत सारी वेरायटी हमारे पास है, जेएस 97 ना मिलो, एनआरसी की वेरायटी ले लो, 37 है, 86 है, एक अच्छी वेरायटी नई अभी आरवीएस विश्वविद्यालय ग्वालियर ने निकाली है, आरवीएस 2001-4, आरवीएस 2010-1, इन वेरायटियों का प्रयोग करो तो आप बहुत अच्छा लगेगा। पिछले साल की वेरायटी यदि सही हो, मॉइस्चर उसमें सही हो, उसका इनर्ट मटेरियल बहुत सही हो, अच्छा हो, तो आप कहीं एक दूसरे खेत में जहाँ को आपको लगता है वहाँ नहीं, वहाँ आप प्रयोग कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन मेरी समझ में तो है कि पुराना बीज आप प्रयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा
3: जी, बिल्कुल जी ठीक
0: है ना। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। और सर बाकी बड़ा अच्छा विषय इन्होंने पूछ लिया सवाल, हमारे किसान भाई एक ही वैरायटी को सालों से बोते चले आ रहे हैं,
2: नहीं अब
0: कई हैं ऐसे किसान भाई, वो ही निकाला वही छाना बो दिया,
2: वो कई हाइब्रिड बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है, वो उनका जीवन काल एक सीजन है बस, ज्यादा
0: बिल्कुल हाँ।
2: हमने कई बार देखा है कि कई बहुत अच्छा अच्छा बीज बाहर से मंगाते हैं और यदि वो नीचे वाला बीज है बोरियों से दबाव, वो भी नहीं
0: उगता है, बिल्कुल सच है।
2: तो ये आपने किस स्थिति में इस बीज को रखा है अपन को क्या मालूम,
0: सही बात है, लोडिंग होके आ रहा है,
2: लोडिंग होके आया है,
0: दब गया,
2: हाँ दब गया, बेकार हो गया।
0: तो ये बहुत बहुत ज्वलंत विषय है, हमारे किसान भाई प्रमाणित बीज लेके आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर उसका अंकुरण परीक्षण हर हाल में
2: करना चाहिए, 80-90% अंकुरण परीक्षण होना चाहिए,
0: नहीं तो खुश हो जाते हैं हम तो साफ वैरायटी का बीज लाए थे
2: और लास्ट में किसान को
0: दिक्कत हो जाती है। अंकुरण परीक्षण की भी हम बात करेंगे, हमारे एक और श्रोता जुड़ गए, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो
4: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में, कहाँ से सुन रहे हैं हम आपकी आवाज को?
4: जिला सागर तहसील बंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह जी।
0: बंडा से फोन है आपका।
4: बहने तो कौन किस्म की बहने? मक्का
0: कौन से किस्म की बहने हैं? सर मक्का की वैरायटी के लिए बहुत सारे लोगों का फोन बार बार हमारे पास आ रहा है, मक्का की अच्छी वैरायटी बताइए।
2: देखो सागर में तो बहुत अच्छी अच्छी मक्का होती है, आपको मैं बताऊं, और फिर भी हम आपको कुछ मक्का की वैरायटी बोलते हैं, वो आपको कृषि विज्ञान केंद्र सागर में मिलेगी, आप वहां जाके ले सकते हैं, मैं नाम आपको लिखा देता हूँ। एक तो लिखिए जवाहर मक्का के नाम से मिलती है, जवाहर मक्का 2016 ये वहां मिल जाएगी आपको। एक पूसा विवेक करके वैरायटी है, अभी अभी आई है मक्का की, बहुत अच्छी वैरायटी है, 90 दिन की वैरायटी है ये, और इसमें विटामिन और प्रोटीन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, वो आप प्रयोग कर सकते हो। गंगा 5 ये वैरायटी आप बहुत ज्यादा उपयोग होती है सागर में, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी, 100 दिन की है, लेकिन ये 90 दिन की, तो ये 100 दिन की है, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो मक्का की आप बहुत सारी वैरायटी का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना ये है कि आपको कैसी मिट्टी में लगा रहे हो, उर्वरक का क्या आप उर्वरक उसमें दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बीज उपचार कर रहे हो कि नहीं कर, इन बातों का आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
0: और साथ ही ये भी है कि आपका उद्देश्य क्या है,
2: हाँ
0: मक्का भुट्टे के लिए बोना है,
2: बोल रहे चाह रहे या पशु के लिए खाने हाँ, के लिए खाने,
0: या आपका उद्देश्य जो है या भुट्टा बेचना है या अनाज के हिसाब से आपको करना है। सर आजकल ये भी एक
2: हाइब्रिड मक्का का प्रयोग करना पड़ेगा
0: जी जी, स्वीट कॉर्न के हिसाब से जो मक्का लगाई जाती है उस वैरायटी के लिए भी आजकल बहुत डिमांड है, चूंकि नकदी फसल के रूप में मैं समझता हूँ कि वो एक मक्का की फसल हो गई है अब, तो ऐसी स्थिति में भी हमें ध्यान रखना होगा। हम वापस अपने प्रश्न पर चलते हैं सर, बात कर रहे थे हम बीज उपचार की, बीज उपचार का सही तरीका क्या है सर, संक्षेप में बता दीजिए।
2: सर बीज उपचार को अपन को 3 तरह से करना चाहिए, जिसको FIR सिस्टम हम लोग बोलते हैं
0: जी।
2: इसमें सबसे पहले एक तो यह है कि आपको किसी भी फफूंदनाशी से पहले आपको बीज उपचार करें, दूसरा उपचार आप किसी भी एक कीटनाशक को लेके करें, और तीसरा आप कल्चर से करें, इसके लिए आप 200 ml पानी ले लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ ले लें, उसकी एक बढ़िया स्लरी टाइप की बना लें, और उस स्लरी में जितना भी PSV कल्चर है आपका, कोई भी कल्चर है, जो स्पेक्टर है, जो वेक्टर है, जो स्पाइरल है, कोई भी कल्चर आप उसमें डाल के उसको घोल के एक काला काला सा घोल बना ले, और पूरे बीज के ऊपर आप एक साथ बिल्कुल समतल उसमें एक उसमें स्लरी को पूरे बीज पे लगा दे और छाया में उसको सुखा ले, और छाया में सुखाने के पश्चात दूसरे दिन आप उसका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, तो इस प्रकार से आप करोगे तो आपका बीज का, ये समझ लो कि आपके बीज में टीकाकरण हो चुका, आपका बीज जमीन में जाके किसी प्रकार की जीव कीटाणु से वो उसको नुकसान नहीं कर पहुंच
0: सकता है। मित्रों बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारे किसान भाइयों ने फोन

0: पर हमसे पूछे हैं और आपने सर बहुत सफाई से बहुत बढ़िया तरीके से उनको उत्तर भी दे दिए हैं। इस पूरे कार्यक्रम को सजाने संवारने में हमें जो सहयोग मिला है मैं आपको बता दूं, उद्घोषिका के रूप में मीठी मधुर आवाज लेकर हमारे साथ थी श्वेता तिजोरिया, प्रसारण सहायक के रूप में हमारे साथ थी फरनाज हसन, कंट्रोल रूम से हमको सहयोग कर रहे थे प्रवीण कुमार सिंह और राजू वासे, कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा का था, सूत्रधार के रूप में मैं आपके साथ था मनोज सक्सेना। मैं आप सभी किसान भाइयों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमें कॉल किया और वे किसान जो केवल हमें सुन रहे थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, फोन लगाने का प्रयास कर रहे थे, फोन नहीं लग रहा था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फोन हमें करते रहिए, हर कार्यक्रम में हम इन्हीं नंबरों पर बात करते हैं। आप हमारा जो कार्यक्रम है, हर बार विषय भी अलग अलग होता है, हर विषय पर हम सवाल और उससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं, तो अगले रविवार हम फिर आएंगे, लाएंगे हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम। सर चलते चलते अगर मैं आपसे कहूं कि बस 30 सेकंड में कुछ बात रह गई हो जो लगता है कि होना जरूरी थी।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है। मैं सर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों को उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ समसहायक कार्य भी एक इसमें बड़ा अच्छा विषय था। उसमें मैं हम अपने किसानों को बताना चाहता हूँ कि जब भी वो बुवाई करे तो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम पखवाड़े में करें। दूसरा, 18 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज अनाज है तो प्रयोग करें, चारे के लिए प्रयोग करें तो 40 से 50 किलो, और पौधों से दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, कतार से दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर करके हमारे किसान भाई इसको पूरा कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ आज की ग्राम सभा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। स्वीकारिए मनोज सक्सेना की राम राम।

0: ये था कार्यक्रम ग्राम सभा। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज मन की बात के 134वें संस्करण में उठाए गए प्रमुख विषयों और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: अशोक जी, मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
4: देखिए, महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने की वो थी मौसम को लेकर, कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और इसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में किससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए। और जो हमारे पेय जल हैं, या जैसे हमारे देश में आम के बारे में, शरबत के बारे में, दक्षिण भारत के, तो उन सब की भी चर्चा की। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो नए कीर्तिमान हुए हैं, उनकी भी चर्चा की। उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत जो ताम्रपत्र वापस किए गए, और इसी तरह से वही नीदरलैंड

0: की यात्रा के दौरान हुए, फिर तो इस तरह के उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे, फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा, लेकिन हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और काफी लंबी समय तक बातचीत की। तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया।
1: और सबसे पहले खेलों की ही बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों की हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पहले अभी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
0: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं, और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आई तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में समाज हित में जब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं और जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है और खासतौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ उसमें 800 एथलीटों ने भाग लिया जो देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उन्होंने गुरिंदर वीर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना, कुलदीप कुमार, इनके अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की। और 2 एथलीट हम बात करेंगे तो गुरिंदर सिंह और अनिमेश, इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे, बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है, प्रधानमंत्री जो है वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
1: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
2: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है।
0: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी

0: इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं साझा की, इनमें से 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से, जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर हैं, ये भारत में जब वापस आएंगी तो भारत की धरोहर संस्कृति विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
0: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है। तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और आज के युवाओं ने भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
0: आज एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी, और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची, और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया, और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। तो एक जीवन जो है उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है, और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए नहर

0: में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का ये संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव हैं। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम डगर विकास के, विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुंच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हुई आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता अर्जरिया।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोरा एकेडमी भी गए थे, जहां पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद, एजुसेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में, कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को, स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को, मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से, तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बाद का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास साधन है, ना उनके पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का, हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज वैल्यू एडिड कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिड कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पर वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है, जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है। प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है। उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित, तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, GI टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में BAC के वैल्यू एडिड कोर्स के टीचर्स नहीं है या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
2: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है, इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं।
3: हाँ। इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं।
1: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, PME विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले हैं, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर खोज सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे IIT है, JEE है, NEET है, PSC है, सारी भाषाओं में बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। PME विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
0: श्रोताओं, PME विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। PME विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के PME विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
4: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को TV, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो IT मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें से दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है। दीक्षा पोर्टल में स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और NCERT द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तो हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं, NCERT की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
0: श्रोताओं, PME विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से, स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से MA के छात्र सौरभ द्विवेदी।
5: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ। उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, दो तीन लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही तो उसमें हमें उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है जिसको पढ़ने में और समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
2: सौरभ आपसे जानना चाहेंगे, स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और जो नए विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहें या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
5: जैसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉगिन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं

0: भी किसी भी फोन में उसको लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे क्लियर कर सकते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
0: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉगिन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉगिन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है कि हम कहीं भी कभी भी पढ़ लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
1: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
0: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी है इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ, जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है, स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है, और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हों, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
1: श्रोताओं, पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़े और अपने सपनों को पंख दें। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र हरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के साथ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आवाजें हैं अनवर और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है हीर रांझा।

हीर रांझा फिल्म का गीत आपने सुना। अनवर और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आईना फिल्म का गीत, जॉली मुखर्जी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार है समीर, संगीत है दिलीप सेन, समीर सेन का।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं परिंदा फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और आशा जी के युगल स्वरों में, बोल हैं खुर्शीद के, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे

0: सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अपना स्कीम के टेली लोन न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लोन के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को

0: बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राम बलराम फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फरमाइश है आप सभी की। सप्तरंग श्रोता परिवार से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली है। कुंभार गली श्री रामपुर से भेजने वाले हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और उनके तमाम साथी। पुनावले पुणे से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अंबिका सोनवने, विशाखा सोनवने और उनके तमाम साथी। ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। जवाहर नगर दुर्ग से ये व्हाट्सएप फरमाइश भेजने वाले हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं राम बलराम फिल्म का गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में।

राम बलराम फिल्म का गीत आपने सुना। इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और आइए मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं समीर का लिखा गीत। संगीत है आनंद मिलिंद का, आवाज़ें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। फिल्म का नाम है वंश और फरमाइश है आप सभी की। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और उनके परिवार के सभी सदस्यों की। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने यह फरमाइश लिख भेजी है। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली मुकेश कश्यप, राजपाल, पंकज, सोनू, सुरेश, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं वंश फिल्म का गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
3: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में, और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं रोग फिल्म का गीत, उदित नारायण की आवाज़ है, बोल हैं नीलेश मिश्रा के, संगीत है एमएम करीम का, फरमाइश आप सभी की। ग्राम खारियां ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया और उनके तमाम साथी। वडिंग खेड़ा पंजाब से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल कृष्णा और राकेश जैन ने ये व्हाट्सएप फरमाइश हमें लिख भेजी है। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं रोग फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनवा रहे हैं नास्तिक फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, धुन हैं कल्याण जी आनंद जी की। फरमाइश आप सभी की। ईश्वर बारा से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली है सतीश आशी खरे, राशि पूजा, पिंटू मुन्ना भाई, प्रियांशी, शिवांशी, कान्हा, अयांश, आरोही, प्रशांत और प्रीतेश की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नेपाल पहले सागर से, और पत्र लिख भेजा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, विवेक रामदास, प्रेम नारायण तिवारी, सौरभ थापा, सुजीत सिरोठिया, मुन्ना भाई और उनके बहुत सारे साथियों ने। ये एक और पत्र इसी गीत के लिए हमें मिला गौर झामर जिला सागर से, और इसे भेजने वाले हैं कुंदनलाल चौरसिया निर्मोही, अंबिका प्रसाद चौरसिया, विवेक कुमार चौरसिया, वीरेंद्र कुमार चौरसिया, निशु चौरसिया, देवव्रत चौरसिया, वैभव चौरसिया, श्रेष्ठ चौरसिया, मानस चौरसिया, शुभांश चौरसिया, नमन चौरसिया और उनके तमाम साथियों ने। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म का नाम नास्तिक, आवाज किशोर कुमार की।

0: इस गीत को सुनना चाहते थे गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जेतेक बिरक और मीका बिरक। इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तब तक सुनते रहिए ये गीत।
1: प्यारे आगे चल चल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी

महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।

पृथ्वीराज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

सुलसला ने अपनी शैली से हटकर टाइल्स से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म सोलवा साल।

0: 1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।
1: सुन

पृथ्वीराज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

0: चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में

तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताज़ा बनाए रखेगा।

0: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ। खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर, पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता। सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सब पुल है जो एहसास बनाती।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क हो

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चनें खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Man Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalised its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4

0: with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:53 पर आपसे

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:53 पर आपसे